101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि और दिनांक 26 जुलाई सन 2026। इस स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली हिंदी में समाचारों के लिए।
1: अभी आपने विपुल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति

0: की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। आइए अब चलते हैं आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। वंदन।

Washington. आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। ये वाक्य महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 261। संगीत सरिता, इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला घुंघरू की तरह का भाग 6। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8:00 होंगे समाचार प्रभात और इसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे सुबह 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आलेख और स्वर यूनुस खान का प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे नए गीत सुबह 8:30 पर और सुबह 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुधीर फड़के पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। यही कार्यक्रम पुनः सुना जा सकता है रात 9:30।

दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक कमेंट्स द्वारा कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुनिए दिन में 3 बजे, संवादक नेहा शर्मा, प्रस्तुत करता राघवेंद्र नेगी। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक वो आएगी, लेखन तस्वीर आबिदी, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल। दोपहर 4 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, फिल्म निर्देशक लेखिका और नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2, संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसी बीच आप 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसी के बाद 6:30 पर झरोखा में आप सुन सकेंगे शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 6:35 पर संध्या रंजन।

विशेष जयमाला में आज आप सुनेंगे महावीर चक्र मेजर दलजीत सिंह नारंग को। इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज अकॉर्डियन अरुण पौडवाल को सुनिए। हवा महल कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे, झलकी चोर के घर मोर, लेखन दिलीप सिंह, निर्देशन कमल दत्त। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम ये आप सुन सकेंगे रात 9 बजे, छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 261।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है, ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

0: घूंघरों की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की छठवीं और अंतिम कड़ी।
1: संगीत सरता के श्रोताओं, हमारा ये खूबसूरत सिलसिला पिछली कई कड़ियों से चल रहा है और साथ में चल रहा है गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन साहब के साथ एक साक्षात्कार, जिसमें हमने उनके विभिन्न आयामों और विभिन्न पहलुओं पर नजर डाली, कभी संगीतकार के रूप में, कभी गायक के रूप में, कभी गीतकार के रूप में, कभी शोधक के रूप में, कभी चिंतक के रूप में। आज इस कड़ी में जैन साहब का एक नया अध्याय खोलते हैं जो हमें उनके आध्यात्म की ओर ले जाता है। ये आध्यात्म उन्हें कहां से मिला, कैसे प्राप्त हुआ और अपने मन से उन्होंने किस प्रकार आध्यात्मिक रचनाओं को सिनेमा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया, इस यात्रा के बारे में दादा से कुछ बात करें। दादा, आपका स्वागत है।
2: आध्यात्म आत्मा का स्वाभाविक गुण है और ये भी मुझे अपने पिताश्री से मिला है। मैंने फिल्मों में और धारावाहिकों में जो कुछ आध्यात्मिक काम किया है उसकी एक झलक छोटी सी आपकी सेवा में रख रहा हूँ।

0: जैसा आपने कहा कि यह आध्यात्मिक उजास आपको आपके पिताश्री से प्राप्त हुआ, आपके संस्कारों से मिला, इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी रचना का प्रभाव आपके मन पटल पर पड़ा हो और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया हो?
1: वास्तविक बात तो यही है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें हो सकता है शब्द या काफिया रदीफ कुछ अलग हो, लेकिन बात सब उन्हीं लोगों की वही लोग बोल रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और कोई आध्यात्मिक रचना आपने कुछ जी। पद भी संगीतबद्ध किए हैं और लोगों को एक एक अजीब सा मतलब अजीब वातावरण से हटा के आध्यात्मिक तरफ लाई हैं आपकी रचनाएं, कुछ और कुछ सुनाए दादा।

0: भावना रखना चाहूंगा और फिर एक मुखड़ा सुनाऊंगा
1: अवश्य,
0: जो अभी अभी मेरे मन में आया है गाने का। ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे।
1: वाह वाह वा।
0: ज्ञान दे पर ज्ञान कितना है न इसका ज्ञान दे। ज्ञान का यदि ज्ञान दे तो उस पे मत अभिमान दे, और यदि अभिमान दे तो औरों का गुणगान दे। शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान दे।
1: वाह वाह।
0: शारदे स्वर साधकों को सिद्धि का वरदान।

0: तथा संगीत सरता के सफर में आपके साथ चलने के साथ मैंने एक बात पाई है कि आपके अंदर जो स्पॉन्टेनियस काव्य रचने की क्षमता है वो बड़े कमाल की है। न जाने कैसी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति है जिससे आप तुरंत कविता कह देते हैं, काव्य रच देते हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे?
1: मैं सिर्फ अपने आप को उस माहौल के हवाले कर देता हूँ और वहां से जो कुछ फूट पड़ता है उसे गा देता हूँ।
0: संगीत सरता का ये संगम, ये सफर भी यहाँ परिपूर्ण हो रहा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम चाहते हैं आप श्रोताओं को दो शब्द कहें।
1: पहले तो मैं

0: दादा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं यहां आने के लिए और हमारे असंख्य श्रोताओं को लाभान्वित करने के लिए मैं राजेश चौरी आपसे विदा लेता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती।

0: से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी के गाए इस गीत के साथ फिल्म तराना से। प्रेम धवन ने इस गीत को रचा है, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनिल बिस्वास का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कवि प्रदीप।

0: हाँ, आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, और अब आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सात बजकर 7:30 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुर संगम आपके लिए होगा 8:15 पर। प्रणाम अयोध्या 8:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात में कारगिल विजय दिवस। पदचिन्ह में डॉक्टर रुचि उपाध्याय जानकारी देंगी अयोध्या के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में। आपके संदेश आपके गीत प्रातः 9:00 और 9:30 पर बातें आसपास की। 10:00 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। 11:00 सुनेगा आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात, और इसके तुरंत बाद कार्यक्रम का संस्कृत भाषा में अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर लोकरंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या 1:00 और 1:30 पर कुछ तुमने कहा गीतांजलि 2:00 और बाल जगत कार्यक्रम होगा 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा कारगिल विजय दिवस और अपना विद्यालय का सामान घर में कैसे व्यवस्थित रखें इस विषय पर चर्चा। साथ ही होगी वार्ता बच्चे जाने ऑपरेशन विजय, जानकारी देंगी नीलम पांडे। रोचक जानकारी में आओ जाने हाथियों की दुनिया और प्रेरक व्यक्तित्व में बातें होंगी APJ अब्दुल कलाम की। 5:00 युवाणी कार्यक्रम, जिसमें होगी चर्चा कारगिल विजय दिवस पर, और ज्ञान विज्ञान में सुनेगा मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र और संस्था में बातें होंगी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की। 5:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी 6:10 पर, गूंजे स्वर गांव के 6:30 पर, कृषि जगत 6:45 पर, जिसमें सुनेगा चर्चा तिल की खेती और भेंट वार्ता में मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां, कारण लक्षण और बचाव, जानकारी देंगे डॉक्टर हुकुम चंद्र वर्मा। लोकगीत और मौसम की जानकारी भी कार्यक्रम में शामिल होगी। शेर और गीत ये कार्यक्रम होगा 8:20 पर, खेल खिलाड़ी 9:15 पर, और हेलो अयोध्या का सजीव फोन इन कार्यक्रम 9:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, और आइए अब चलते हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण प्रदूषण। के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान

0: में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए अधमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद CJP ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1,274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी CJP के बीच कल तीसरे दौर की वार्ता में CJP ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह तथा CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने CJP की इस मांग को मान लिया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई FIR दर्ज की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा और FIR की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी का ताकतें लाभ ना उठा सके और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी दांव पेच में ना उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है।

0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने कल संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उझानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी।
1: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उझानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उझानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
0: श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित न्यू एसआईटी टीम का विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसमें आईजी किरण एस के अलावा डीआईजी अयोध्या सुमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है। इससे पहले न्यू एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार शामिल थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्सेंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।
2: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
2: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
3: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है।

0: माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं हूं दीपिका और आप सुनने जा रहे हैं हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। कहते हैं जब मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मिक शांति का सुंदर संगम है। तो आइए कुछ पल संसार की भागदौड़ से दूर होकर ईश्वर के सानिध्य में बिताते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले मधुर भजन से।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।

0: आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
1: RHL Gold TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या और कार्यक्रम चल रहा है अमृत कलश। दोस्तों, ईश्वर का स्मरण हमें धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच देता है। जीवन में हालात कैसे भी हो, अगर विश्वास अडिग हो तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। दोस्तों, भक्ति को परिभाषित करना आसान नहीं है, पर मुझे लगता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा को अपनाना भी है। जब मन निर्मल होता है, तभी ईश्वर का सच्चा अनुभव होता है।

0: के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल करें 94532 21909।
1: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
2: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
1: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
2: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
1: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आँखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
4: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
7: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमृत कलश। दोस्तों, सच्ची भक्ति हमें ये सिखाती है कि बाहरी वैभव भले ही ना हो पर मन में पवित्रता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जरूरी है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं तब जीवन में सुख और संतोष अपने आप आने लगते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
6: संगीत और भी ज्यादा सुंदर बन जाता है जब उसमें भक्ति का भाव जुड़ जाए। ऐसे भजन केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करते हैं। तो आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं इस कामना के साथ कि प्रभु की कृपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। और आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
4: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
4: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
6: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
4: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
7: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
4: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय।

0: लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में

0: कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:00 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल्ली से समाचारों के बाद हमारे साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड पर और आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। दोस्तों आज है कारगिल विजय दिवस, वो दिन जो पूरी तरह से समर्पित है हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को। और आज इस दिन पर हम इस प्रोग्राम में बातें करेंगे देश सेवा की। ये दो शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहले किसकी तस्वीर उभरती है? क्या हाथ में तिरंगा लिए कोई सैनिक या फिर बर्फीली पहाड़ियों पर सीमा की रक्षा करता एक जवान? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या देश सेवा सिर्फ वर्दी पहनकर की जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी साथी दीपिका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम सुर संगम। दोस्तों देश की सेवा शुरुआत किसी बड़े पद से नहीं बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों से होती है। जब एक शिक्षक पूरी मन से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, एक किसान तपती धूप में मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है, एक डॉक्टर रात भर जाकर किसी की जान बचाता है, एक सफाई कर्मी सुबह सुबह हमारी गलियों को साफ करता है और एक वैज्ञानिक देश के लिए नई खोज करता है, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर आज हम सच्चे मायनों में कारगिल विजय दिवस मनाना चाहते हैं तो हम उन सैनिकों को धन्यवाद तभी दे सकते हैं जब हम अपनी जगह पर खड़े होकर अपने फर्ज को 100% निभाएं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
4: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संगम और हम बातें कर रहे हैं देश सेवा की और हमारे हिस्से की देश सेवा हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम सड़क पर कूड़ा न फेंकें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी की बचत करें, ईमानदारी से अपना काम करें, जरूरतमंद की मदद करें और अपने मताधिकार का सही सही इस्तेमाल करें।

दोस्तों, एक मजबूत देश अच्छे नागरिकों से ही बनता है। याद रखिए, देश हमसे नहीं पूछता कि हम क्या बनना चाहते हैं, देश बस इतना चाहता है कि हम जो भी बने एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बने। तो आइए एक छोटा सा संकल्प लें, मैं अपने देश को बदलने की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि खुद से करूंगा।

0: ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे, सांस लेना भी मुश्किल और सामने दुश्मन के गोलियों की बौछार। ऐसे कठिन हालात में भी अगर कोई सैनिक मुस्कुराते हुए ये कहे कि मैं तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर, तो सोचिए उसके हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। ये कहानी है कारगिल विजय की और यही कारण है कि हर वर्ष 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस गर्व, सम्मान और कृतज्ञता के साथ मनाता है। साल 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की। उनका इरादा भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन वे शायद भारत के वीर जवानों का साहस नहीं जानते थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि हर सैनिक के लिए मातृभूमि की रक्षा का संकल्प था। दुर्गम पहाड़, बर्फीली हवाएं और दुश्मन की लगातार गोलाबारी, इन सब के बीच हमारे सैनिक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर फिर से तिरंगा फहरा दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति की विजय थी। दोस्तों जब भी कारगिल की बात होती है तो कुछ नाम अपने आप जहन में आ जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नारा ये दिल मांगे मोर आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और ऐसे ही अनेक वीरों ने अपने अद्भुत साहस से इतिहास रच दिया। कुछ तिरंगा लहरा कर लौटे तो कुछ तिरंगे में लिपट कर। दोस्तों हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सीमाओं पर हर पल जागते हैं। हम अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा का पर्व मनाते हैं। उनका ये त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं, उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और अपने भीतर देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाने का संकल्प भी लेते हैं।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: आपके संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत।
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
5: दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या और कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सूचना आपके लिए। दिनांक 27 जुलाई दिन सोमवार को प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय है बरसात के मौसम में आंखों से संबंधित समस्याएं और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आकाशवाणी के

0: स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ अयोध्या से डॉक्टर गजेंद्र पाल। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का फोन नंबर 7376804090। समय एक बार पुनः सुन ले, समय शाम 5:30, दिनांक 27 जुलाई 2026, दिन सोमवार, और फोन नंबर होगा 7376804090। और ये सूचना यही संपन्न हुई। और अब बढ़ाते हैं हमारे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम का सिलसिला आगे, और कार्यक्रम में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जानकारी। अयोध्या के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि उपाध्याय।
1: मोक्षदायी अयोध्यापुरी की पावन भूमि में श्री राम पथ के अविश्रांत पथिक चिकित्सा विज्ञान साहित्य इतिहास एवं लोक परंपरा के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय की मनस्विता पर आचार्य भर्त हरि की पंक्तियां सटीक बैठती हैं, जिसमें वे कहते हैं कि मनस्वी लोगों की वृत्ति दो प्रकार की होती है। पुष्प गुच्छ की भांति या तो वे देवार्पित होते हैं अथवा अपने मूल के साथ पुनः फल बनकर नए सृजन को अपना लेते हैं। वे सच्चे अर्थों में राजीव रंजन थे, इसलिए उन्होंने द्वितीय मनस्वी वृत्ति को अंगीकार कर जीवन को नव सृजन के मार्ग पर चलाया। इसलिए भी क्योंकि वे कैंसर शोध के आचार्य थे, इस प्रकार साहित्य इतिहास और शोध तीनों ही विधाओं के ख्याति प्राप्त शोधक सर्जक एवं साधक थे। डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मस्कनवा के शीतलगंज ग्रांट में चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रमी 1998 तदनुसार 4 मार्च 1942 ईस्वी को पिता श्री दिनेश नारायण उपाध्याय एवं माता श्री वसुंधरा देवी की संतान के रूप में हुआ। आरंभिक शिक्षा जनपद के गांधी विद्या मंदिर और टॉमसन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से पूर्ण करने के बाद कैनिंग कॉलेज लखनऊ से बीएससी 1961, लखनऊ विश्वविद्यालय से 1963 में कार्बनिक रसायन विज्ञान से एमएससी करने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी 1968 उपाधि प्राप्त किया। तदंतर वे उच्च शोध एवं अध्ययन हेतु ईरान के तबरीज विश्वविद्यालय को चुना, जहां नॉर्वे के नोराड एवं जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलो 1968-72 के रूप में कैंसर शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर भारतीय मेधा का मान बढ़ाया। ईरान से वापस स्वदेश लौटने पर उन्होंने विज्ञान की लोकप्रियता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अखिल भारतीय स्तर के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अनेकों विज्ञान कथाएं प्रकाशित कराईं, साथ ही कुछ का हिब्रू और बंगला भाषाओं में अनुवाद भी किया। अध्ययन अनुसंधान की अपनी मूल विधा विज्ञान में तो कैंसर शोध से संबंधित शताधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं जर्नल में प्रकाशित कराया। भारत में आने के पश्चात उन्होंने अखिल भारतीय विज्ञान कथा लेखक समिति की स्थापना कर विज्ञान कथा मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिनके माध्यम से स्वयं की विज्ञान कथाएं तथा अन्य लेखकों की वैदिक पौराणिक विज्ञान कथाओं पर संग्रहणीय लेखों का प्रकाशन, एक विज्ञान कथा की महत्ता के स्थापित करते हुए 2 दर्जन से अधिक अंकों का संपादन एवं प्रकाशन किया। कैंसर चिकित्सा एवं शोध के क्षेत्र में उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। 1989 से 2026 तक लगातार 37 वर्षों तक लेखन विलक्षण और विचक्षण है। इस प्रवृत्ति को धार देते हुए उन्होंने लेखन प्रकाशन संपादन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर वार्ता एवं प्रसारण, साथ ही विज्ञान पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया, जिनमें कतिपय का उल्लेख करना उनकी विज्ञान प्रतिभा को नमन ही है, यथा विज्ञान कथा संग्रह वैज्ञानिक लघु कथाएं 1900

1989, आधुनिक विज्ञान कथाएं 1991, सूर्य ग्रहण 2004, आधुनिक ययाति 2004, वे चंद्रमा से आए 2005, वैज्ञानिक पुरा कथाएं 2007, उत्तरी आकाश गंगा में 2012, एक और शिखंडी 2012, खांसी 2012, 21वीं सदी में अंधविश्वासों का चक्रव्यूह 2012, आधी रात का सूर्य 2013, रोमांचक विज्ञान कथाएं 2016, चर्चित विज्ञान कथाएं 2020, संचार माध्यमों के लिए विज्ञान कथा संपादन 2000, प्रसारण माध्यमों के लिए विज्ञान गल्प आकाशवाणी संपादन 2002, लोकप्रिय विज्ञान लेखन एवं विज्ञान पत्रकारिता अभिमत 2005, नव सृजन 2005 आदि। डॉक्टर उपाध्याय के विज्ञान विषयक लेखन संपादन का ही सुफल था कि उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों से अलंकृत किया जाता रहा। इनमें ईरान का कैंसर शोध पुरस्कार 1978, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च बोर्ड का सम्मान 1992, विज्ञान वाचस्पति मानद उपाधि 1996, विज्ञान कथा भूषण सम्मान 2001, विज्ञान परिषद प्रयाग सम्मान 2013 तथा विज्ञान परिषद प्रयाग सारस्वत सम्मान 2015 प्रमुख हैं। वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने जीवन भर स्वतंत्र रूप से विज्ञान कथा लेखन किया, जिसका विज्ञान के क्षेत्र में सदैव सम्मान मिलता रहा। हिंदी भाषा में लेखन डॉक्टर उपाध्याय जी का एक विशिष्ट गुण था। आंग्ल भाषा में शिक्षित होने के बाद भी उन्होंने हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति को महत्व दिया। हिंदी भाषा में विज्ञान विषयक विविध विधाओं के लेखन के साथ ही वे एक समादृत हिंदी लेखक भी थे। यह उनका वंशानुगत गुण था। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमघन जी के प्रपौत्र थे। उन्होंने वर्ष 2014 में प्रेमघन ग्रंथावली की 8 खंडों में संपादन और प्रकाशन किया। वे हिंदी के नव सर्जक थे। इसी का परिणाम था कि हिंदी जगत ने भी उनको पहचाना और अनेक सम्मानों पुरस्कारों से समलंकृत किया, जिनमें पद्मश्री सोहनलाल द्विवेदी जन्मशती हिंदी सेवा सम्मान 2005, अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार रजत अलंकरण 2006, साहित्य शांतिराज हिंदी गौरव अलंकरण 2008, संपादक सिद्धहस्त 2008, संपादक शिरोमणि 2011, गणेश दत्त सारस्वत सम्मान 2013 विशिष्ट है। श्रद्धास्पद मनीषी एवं सारस्वत व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर उपाध्याय जी के सृजनात्मक, शोधात्मक तथा तथ्यपरक लेखन का एक बड़ा क्षेत्र इतिहास भी रहा है। यह भी नियत की योजना ही थी कि उन्हें धर्मपत्नी के रूप में श्रीमती डॉक्टर राधा रानी उपाध्याय भी इतिहास की विदुषी मिली, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल के निर्देशन में चरक संहिता में सांस्कृतिक सामग्री का अध्ययन विषय पर पीएचडी 1971 की उपाधि प्राप्त की। उनके इतिहासकार व्यक्तित्व का प्रमाण इतिहास शोध पत्रिका में प्रकाशित उनकी नवीनतम कृति आर्मेनिया का इतिहास 2026 की समीक्षा है। विगत लगभग 2 दशकों से डॉक्टर उपाध्याय ने वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के गहन अध्ययन एवं शोध में लगाया। वर्ष 2021 में उनकी प्रकाशित पुस्तक वैदिक पणिजन और उनके ऐतिहासिक प्रारूप फोनीशियन के पुरोवाक में प्रख्यात इतिहासकार एवं लिपि शास्त्री प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा वाराणसी लिखते हैं कि प्रोफेसर राजीव रंजन उपाध्याय वृत्ति से वैज्ञानिक हैं, लेकिन रुचि और प्रवृत्ति में इतिहासकार हैं। ईरान के तबरीज विश्वविद्यालय के शोध संस्थान से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अपना जीवन हिंदी और इतिहास को समर्पित कर दिया। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने हिंदी में ही लिखने का संकल्प लिया और विज्ञान कथा पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी जगत से जुड़ गए। संप्रति वे वैदिक साहित्य और विश्व की प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन में लगे। इसी मंथन का परिणाम यह पुस्तक

है जिसमें वैदिक पढ़ियों को फोनिशियनों के साथ समतुलित करके विश्व की संस्कृतियों में उनके योगदान का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ऐतिहासिक शोध की यह एक नई दिशा है जिसके लिए वे साधुवाद के अधिकारी हैं। उनकी इतिहास विषयक नवीन कृतियां यथा वैदिक पणिजन और उनके ऐतिहासिक प्रारूप फोनिशियन दिल्ली 2021, प्राचीन तुर्की अनातोलिया के वैदिक हित्ती शासक दिल्ली 2021, प्राचीन सुबा रूम के असीरिया के असुर शासक दिल्ली 2024, आर्मेनिया का इतिहास 2026 की समीक्षाएं इतिहास शोध पत्रिका के विगत अंकों में प्रकाशित हुई हैं। वैदिक विश्व के विविध पक्षों पर

0: वैदिक पणिजन और उनके ऐतिहासिक प्रारूप फोनीशियन दिल्ली 2021, प्राचीन तुर्की अनातोलिया के वैदिक हित्ती शासक दिल्ली 2021, प्राचीन सुबा रूम के असीरिया के असुर शासक दिल्ली 2024, आर्मेनिया का इतिहास 2026 की समीक्षाएं इतिहास शोध पत्रिका के विगत अंकों में प्रकाशित हुई हैं। वैदिक विश्व के विविध पक्षों पर उनकी प्रकाशित कृतियों से विश्व इतिहास में वैदिक जनों के योगदान पर शोध कार्य करने वाले अध्येताओं को नई दिशा मिलेगी, ऐसा विश्वास है। ईरान के तबरीज विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने वहां के सांस्कृतिक जीवन में वैदिक जनों और उनकी संस्कृति का प्राग रूप देखा और उस दिशा में गंभीर शोध हेतु प्रवृत्त हो गए। उन्होंने प्रधान संपादक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा की नवीन मौलिक शोध कृति हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ जम्बू द्वीप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 2024 की वृहत समीक्षा लिखी, जिसका प्रकाशन इतिहास शोध पत्रिका के गत अंक 11 भाग 2 2025 में वर्णित है। इस समीक्षा से हिंदी पाठकों को उस महत्वपूर्ण पुस्तक का सार संक्षेप मिलेगा। प्रायः यह दिखाई देता है कि अपनी विषयगत विद्वता और शोध के कारण विश्व के अनेक अकादमिक संस्थाओं से समादृत विद्वान स्वदेश लौटने पर उसी पश्चिमी मानस को अपनी पहचान बनाकर लेखन करते हैं, किंतु डॉक्टर उपाध्याय जी ने अपनी विदेश सेवा तथा लंबे प्रवास में एक भावी अनुसंधान का नवीन क्षेत्र खोजा। उन्होंने देखा कि फिनिशिया, असीरिया, सीरिया, अनातोलिया, आर्मेनिया, मिस्र आदि मध्य एशियाई, पश्चिमी एशियाई एवं यूरोप में वैदिक जनों के चरण चिन्ह आज भी अक्षुण्ण हैं। इसलिए उनके लेखन ने एक नई विधा को प्रासंगिक एवं कृणवंतो विश्व मार्यम को चरितार्थ करने वाला बनाया और उस पर शोधात्मक लेखन से इतिहास को समृद्ध बनाया। इस प्रकार एक चिकित्सा वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं इतिहासकार के सम्मिलित व्यक्तित्व के धनी तथा वैदिक ऋषियों की इतिहास दृष्टि के साथ भारतीय एवं विश्व के इतिहास के प्रामाणिक लेखन का मार्ग प्रशस्त करने वाले मनीषी आचार्य डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय को इतिहासकारों, इतिहास शोध पत्रिका के संपादक मंडल तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली नगर अयोध्यावासी और परिवारजन की ओर से भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धांजलि एवं नमन अर्पित है। नमः ऋषिभ्यः, पूर्वजेभ्यः, आचार्येभ्यः।
1: दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें हमने आपको सुनवाई जानकारी अयोध्या के प्रोफेसर डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक नजर। जानकारी दे रही थी डॉ. रुचि उपाध्याय। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश।
2: क्या आप अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं? तो आइए भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अयोध्या, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमफॉर्म, बीफॉर्म, डीफॉर्म, एमएससी और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमलिट, बीलिट, बीएससी होम साइंस, एमकॉम, बीकॉम में प्रवेश हेतु भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, निकट लोहिया पुल, सीबार, सुहावल, अयोध्या में। अभी कॉल करें 7081680000।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91 16 76 47 46।

0: यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहां हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियां जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, और अब लेकर चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आप सभी को इंतजार। जी हां, वो खबरें जिन्हें हम ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए समाचार पत्रों से। और हमारे इस सेगमेंट की जो पहली खबर है वो है कि घर घर जाकर रोगियों की जानकारी ले रही है आशा। बरसात के मौसम में मच्छरों के प्रजनन और जल भराव के कारण संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस वर्ष अब तक जिले में मलेरिया के 11 और डेंगू के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चला रहा है। इसके तहत 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाने के साथ संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग भी कर रही है। विभाग इसके साथ ही संचारी रोगों को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत स्कूलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दस्तक अभियान का उद्देश्य संचारी रोगों के संभावित मरीजों की समय रहते पहचान करना, उन्हें जांच और उपचार से जोड़ना और बीमारी के प्रसार को रोकना है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है स्वास्थ्य विभाग की। और अगली खबर है वो है सावन मेले से जुड़ी हुई। सावन झूला मेले को लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट है। राम मंदिर में सावन मेला के दौरान 8 अगस्त से 11 अगस्त और 23 से 28 अगस्त के मध्य आम श्रद्धालुओं को पूरे परिसर में बिना पास दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगाए जाने की संभावना है। बताया गया है कि 8 से 11 अगस्त के बीच अयोध्या में 5 से 10 लाख कांवड़ीय श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इसी तरह से 23 से 28 अगस्त के मध्य भी सावन झूला मेला अपने चरम पर पहुंचने की स्थिति में भी अधिकतम भीड़ की संभावना है। इसके अलावा भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ही सावन मेला का शुभारंभ हो रहा है। इसके कारण भी बिना पास धारक श्रद्धालुओं को पूरे परिसर में दर्शन से रोका जा सकता है। यानी कि हमारे जो भी श्रद्धालु अयोध्या आगमन के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो पहले थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा होमवर्क कर लें, ताकि यहाँ पर आने के बाद उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
7: टॉल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
3: तो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा आज का ये प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम फिलहाल यहीं तक। और हाँ, आपकी ये दोस्त आपसे ये जरूर कहना चाहेगी कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, हमारे कार्यक्रम में आपको किस तरह के बदलाव देखने का मन करता है, वो जरूर हमें कार्यक्रम आपकी बात के माध्यम से हमें सूचित करिए। और हम आपके व्हाट्सएप संदेशों का, आपके फेसबुक पर आए संदेशों का, और बिल्कुल आपके हर तरह से आने वाले संदेशों का पूरी तरह से इंतजार करते हैं। तो इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त दीपिका को कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या से।
10: प्रणाम अयोध्या।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं और आइए अब आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। आपके संदेश आपके गीत ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और हम बिल्कुल बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हुए आपके संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला संदेश है हमारे पास वो है बक्सर बिहार से। श्रोता है शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, और हमारी ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म आक्रोश का गीत। तो आइए कार्यक्रम में आप शामिल करते हैं फिल्म आक्रोश से ये गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में अब हम शामिल करने वाले हैं अगली फरमाइश को जो हमें मिली है व्हाट्सएप के माध्यम से। और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं वीरेंद्र शमशेर, सुरेंद्र मनोज जेवरा हिसार से। और हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म दिल जले का गीत, तो आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं अपना अगला गीत। फिल्म है दिल जले।

दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और ये संदेश आप भेजते हैं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगला जो संदेश है हमारे पास वो है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का, और हमारे इन श्रोताओं की पसंद है फिल्म सरगम का गीत। तो अगला गीत है कार्यक्रम में फिल्म सरगम से।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप।

0: app now and watch for free.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो
2: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में जो अगला मैसेज है व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास, वो है फिल्म दोस्त के गीत के लिए। और सुनना चाहते हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा।

0: पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप की आई फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। और कार्यक्रम में चलते चलते शामिल करते हैं फिल्म यादों की कसम फिल्म का गीत, जिसे सुनना चाहे बीजेपुर बड़गा उड़ीसा से सुबल कुमार साहू और सौरभ कुमार साहू ने।

मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों

तो दोस्तों इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब समय हमारे अगले कार्यक्रम का जिसका नाम है बातें आसपास की। बातें आसपास की कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। वतन की मिट्टी का कर्ज हर सांस से चुकाएंगे, वतन की मिट्टी का कर्ज हर सांस से चुकाएंगे, भारत की शान के लिए हम हर कदम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज है

कारगिल विजय दिवस और आज के इस दिवस पर हम नमन करते हैं अपने सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को और सल्यूट करते हैं उनकी शहादत को। दोस्तों आज है कारगिल विजय दिवस और वो दिन जिसे हम सभी भारतवर्षी गर्व से याद करते हैं और आज के इस गौरवपूर्ण दिवस पर आज की बातें में हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और बातें करेंगे डोगरा रेजिमेंट अयोध्या की।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड।

0: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
0: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
4: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
5: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आसपास की, और हम बातें कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट अयोध्या की। और इस कार्यक्रम को, इन बातों को हम आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक माइक्रोफोन सूचना। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC सीजन 2 के लिए मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े अलग अलग चैलेंज की रूपरेखा तैयार करने, उन्हें डिजाइन करने और लागू करने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन संगठनों संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े चैलेंज के लिए कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, डिजिटल और सोशल मीडिया, एनिमेशन, VFX, ऑनलाइन सोशल गेमिंग, e-sports, कॉमिक्स, XR/AR/VR, फिल्में, ब्रॉडकास्टिंग, संगीत और नृत्य, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी अन्य कैटेगरी। आवेदन और विस्तृत जानकारी वेबसाइट wavesbazaar.com से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026। तो श्रोताओं, ये सूचना तो संपन्न हुई, और आइए फिर से जुड़ते हैं एक बार कार्यक्रम बातें आसपास की में। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या भारतीय सेना की सबसे गौरवशाली पैदल सेना रेजिमेंट्स में से एक है। एक डोगरा रेजिमेंट का प्रशिक्षण और प्रशासनिक केंद्र है। ये अयोध्या कैंट में स्थित है और यहाँ नए सैनिकों और अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है।

दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आसपास की और हम बातें कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट अयोध्या की। डोगरा रेजिमेंट की जड़ें वर्ष 1858 से जुड़ी मानी जाती हैं। बाद में 1922 में ब्रिटिश भारतीय सेना की कई डोगरा बटालियनों को मिलाकर 70वीं डोगरा रेजिमेंट बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय सेना का हिस्सा बनी और इसका नाम डोगरा रेजिमेंट हो गया।

0: मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
5: दीवाने।
6: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
5: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
6: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
7: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
7: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
8: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
9: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातें आसपास की और हम बातें कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट अयोध्या की। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर पहले मेरठ में था। वर्ष 1976 में इसे मेरठ से फैजाबाद यानी कि वर्तमान अयोध्या स्थानांतरित किया गया। तब से अयोध्या ही इसका स्थायी रेजिमेंटल सेंटर है। इस केंद्र में सैनिकों को फिजिकल ट्रेनिंग, हथियारों का प्रशिक्षण, सामरिक प्रशिक्षण, अनुशासन, नेतृत्व और युद्ध कौशल का अभ्यास कराया जाता है।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
3: नहीं अछूता हो जिस
2: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
4: तो दोस्तों, कार्यक्रम बातें आसपास की में आज हम बातें कर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट अयोध्या की। डोगरा रेजिमेंट ने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में अपनी भूमिका निभाई है, जिनमें शामिल है 1947-48 का भारत पाक युद्ध, 1962 की भारत चीन युद्ध, 1965-1971 में भारत पाक युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध। रेजिमेंट की कुछ खास बातें करें तो यहाँ युद्धघोष के तौर पर ज्वाला माता की जय का प्रयोग होता है और वहीं आदर्श वाक्य है कर्तव्यम अन्वात्मा, यानी कि ड्यूटी बिफोर डेथ। और इस बटालियन को जेंटलमैन वॉरियर्स भी कहते हैं और इसका प्रतीक है बाघ।

दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या नमन करता है अपने सैनिकों के अदम्य साहस को और सल्यूट करता है उनकी वीरता को। उनकी शहादत से हमारा देश संपन्न है, स्वस्थ है और समृद्ध है। और इन्हीं सारी बातों के साथ इस कार्यक्रम में जय हिंद जय भारत। तो श्रोताओं, इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम बातें आसपास की अब यहीं संपन्न होता है। और इस सभा से दीजिए अपनी इस रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। और आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की। और आइए अब आपको मिलवाते हैं अपनी अगली हम सफर ऋचा से।

धन्यवाद दीपिका। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रातः के 10 बजने को है। आइए सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: We bring you a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment, and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
1: एक community जब कोई problem से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब air quality हो, या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो court नहीं जा पाता है. Court final stage पे आता है and court इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि court पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारे देश में, that is justice. अब environment दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पे जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं. अब एक कोई गाँव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं. एक एक जंगल पे एक

0: आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है, वी गेट इट इन सुपरमार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमेडीज का जरूरत उनसे सबसे ज्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके जंगल से लेके कोस्टल एरिया से लेके सारे कुछ चीजों पे एक रेमेडीज मिलने का ऑप्शन, एक अवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीजों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग अप विद इंडस्ट्री विच इज टेकिंग सच एंड सच ग्राउंड वाटर, सच एंड सच कटिंग दैट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑन द लोकल पीपल, लोकल एनवायरमेंट, दैट नीड टू बी असेस्ड बिफोर द प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड। दिस इज द प्रोविजन which is the precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification, it's a notification under environmental protection act. So in that there is a provision of public consult.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area. So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that gives the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज लीगली किया गया। उसके बाद ये चीज जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत इम्पायर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पे बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारा

0: सुधार आए हैं, जिसपे एक जो फिशिंग फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे, तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकर्स ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसके क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैंग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैंग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए, उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाई कोर्ट, जिसपे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन क्लास 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस, इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट when we talk about environmental justice we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एनआईसी के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो, सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी सिटीज के लिए एनकैप का प्रोविजन बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा

कॉम्पेसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है. अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए. उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना. उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं. सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी सिक्स मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट. उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसेस के हमारे ऑफिसेस करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं. अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना. एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है. अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है. एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं. इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60. सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को भी लिख सकते हैं.

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies by Shubhrajit Goswami, Program Officer, Center for Science and Environment and Smita Harshal Salve, Senior Legal Consultant, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
3: जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
4: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से
3: फिल्म? मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
4: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
3: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था।
4: हाँ।
3: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो। हाँ, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
4: जी,
3: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि

0: कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना। तो देखते देखते तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा,
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपये का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी, जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर 1 है, इंडिया के एक माने हुए परकशन हैं, जो कि रिदम में मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक तबला कोंगो बोंगो तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी,
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: सच्चाई है, जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: तो 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जॉब. उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है. उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था. वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था. बोले ये खामों का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे. अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख. तो वो माने नहीं. तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ. तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी. तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है. तो मैं पहली मर्तबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था. वहां असद भोपाली साहब आते थे.
1: अच्छा, गीतकार.
0: तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था. तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का. कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वाली साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी.
0: तो मैं असद वो वाली साहब को बोला मैं चाचा कौन मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा. उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम पर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा. मुझे बताया नहीं कहां ले जाएंगे. मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को. मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है. तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे. बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा. मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है. बोले जाओ. तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा. तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं. तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तू आ जा गाने सुन ले. तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन इनमें. बोले यही बच्चे. बोले ये बच्चे सुनाएंगे. ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, वाकई में नहीं लग रहे थे. अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम. तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए. 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें. आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं. तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. मुझे रात भर नींद नहीं आई. हम सुबह पहुंचे. उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे. तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे. तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ. तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया हमको, एक छोटा सा लिफाफा दिया. तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई
1: जी.
0: तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए.
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली. मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को. उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है. तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे. तो मैं उनके यहाँ सीखता गया उन्हीं

0: के यहाँ मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहाँ मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहाँ सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे मतलब जब मैं सक्सेस हुआ तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है
1: जी।
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं मगर कंपोजिशन बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुरा ना माने तो सुनाना चाहूंगा, हमने ये दिलेगी के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते, बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, बोले यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक पहले, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू तू ना धुन तू धुन तू ना धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे क्योंकि इसका जो वर्ड था जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है, तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को,
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं
1: अपना ही
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं, आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ही रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे
0: जी,
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं अच्छा कर रहा है तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अभी इसको सम में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, तीन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी।
1: ये 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा उन्होंने
0: कि नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूँ, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे
0: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में आपको यश जैसा बड़ा

0: बैनर मिला यश चोपड़ा जी का और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का मौका मिला बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, ड्रीम था, सपना
0: ड्रीम
1: था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती। तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूँ कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कैसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी।
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा तक दिना के दिन दिन तिन्ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया।
0: जी।
1: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त स्ट्राइक सिस्टम आ गया था। तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
0: अच्छा।
1: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया। बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई क्या, जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा। मैं बोला नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रह गई। बोले कैसे, बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था। मैं बोला सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा तक। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोली मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
0: नम्रता
1: के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लौंडा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
0: लेकिन एक महान,
1: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ,
0: बहुत सुंदर गाना।
1: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम वो सजना।
0: बहुत सुंदर।
1: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते दीदी के पैर छुए, माफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है, तो गाना 3 सिंगरों का था,

दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी, सुना उन्होंने बोला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों तूने धुन नहीं बनाई? बोला नहीं आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ। तो बोले क्या तूने वो चोरी की है? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यार कमारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार कमारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ, ये भी गा दिया उन्होंने।

0: तब तक खाने में थोड़ा और लेट हो रहा था।
1: हाँ।
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए, एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ।
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है ये मेरे दिल के करीब है
1: जी।
0: बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ जब कोई गाना है, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था, धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। वो गाना इस तरीके से था, हो तुम पे बस तेरा

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी।
0: दो मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस करेक्ट नहीं होती तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी। तीन बोले नहीं ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया, गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे
1: जी।
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चालू कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का, एक ही समय में चार गाने गाए हूँ। ये मेरे लिए बहुत
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही
1: जी।
0: और मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए
1: जी।

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा,
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में, तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे।
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता,
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की, चित्रा जी बोलते हैं उनको। उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह

0: बात है, बहुत
1: तो ये गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
0: जी जी।
1: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पचीजिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था

0: दिल
1: बहुत गहरा गाना
0: अब
1: था।
0: ये गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओधा है, जो उनकी पोस्ट है
1: उसको भी रखना है,
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं एक मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर जाता था उनके केबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ, नहीं नहीं मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है
1: जी,
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों में बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, तुझे मैं छुपा लूं, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। तो ये मुर्गी रिमेंड ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुभाते हैं, तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो अटक गए, तो अटक गए, तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और काबिल है।
2: आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन

0: उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंची। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था।
1: ठीक है, इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है।
0: नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित की है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आस पास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुई है। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु

बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी

और सर्दियों में गर्माहट। पहले ये कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों बगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन बगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपये से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल

फिर से बसेरा बना रहा है। ये गिर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूँ, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई उमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हैं। उसी प्रकार यूनिवर्स में

ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकतक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्यौहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरो फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते, स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार माई गॉव पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मां भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं

0: आकाशवाणी दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात का संस्कृत संस्करण। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये उन अनगिनत नायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये दायित्व सौंपा गया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के अनहर सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म LOC करगिल से। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना तेरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: हेलो
4: टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

0: digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

आकाशवाणी के ई कार्यक्रम लोकरंग में हमारे सभी श्रोता भाई बहन के बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी जानत हैं कि लोकगीत इखाली सुरन के संगम नहीं बल्कि पीढ़ियन के अनुभव, पुरखन के आशीर्वाद, किसानन के मेहनत, सावन के फुहार, सब कुछ अपने अंदर समेटे रहा था।

देखा जौन माटी आपन लोकगीतन का संजोय लेत है ना, वो माटी कबहू बंजर न होत, उस संस्कृति संस्कार और सभ्यता से हमेशा हरी भरी रहत है। और देखा यही मारे तो अवध के धरती का ना लोक संगीतन के खजाना कहा जाता है।

पीछे पीछे वो बताना।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देखा आप सभी सुनत हैं कार्यक्रम अवधि लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग, और देखा समय बदल जात है, पीढ़ियन बदल जात है, लेकिन जोने गीत आए ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजत रहा था।

देखा वीरन के बलिदान के जोन कहानी है ना वो किताबन में भर भर के लिखी गए लेकिन जोन साहस लोक गीतन के सुरन में जियत है ना वो कहीं ना मिलत।

और देखा आज कारगिल दिवस पे अवध के माटी अपन अमर वीरन का कैसे भूल सकत है। देखा जौन धरती अपने सपूतन के लहू से सींची जात है ना, वो धरती धन्य हो जात है। और जौन वीर मातृभूमि के मान के खातिर हसत हसत अपन जान दे देते है ना, उनकी यश कबहू मिट नहीं सकत।

अभी आप सुन रहे थे अवधी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

जहां हिमालय की चोटियां वीरता का गीत गाती हैं, जहां तिरंगा केवल ध्वज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की शान स्वाभिमान का प्रतीक है, वहीं इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित है कारगिल विजय दिवस की अमर गाथा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ऋचा, बने रहिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ और जल्दी से डायल कीजिए आपका अपना नंबर 7376804090। और आज का ये हेलो अयोध्या कार्यक्रम उन अमर शहीदों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, उन वीरों की जो माताएं हैं उनको नमन है।

0: जिन्होंने अपने लाल अपने पुत्र को देश को समर्पित कर दिया। उन परिवारों को प्रणाम है जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को पर न्यौछावर कर दिया, और उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता है जो आज भी सीमाओं पर अडिग खड़े हैं ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक निश्चिंत होकर जीवन जी सके। हेलो जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी आपका नाम जरा एक बार फिर से बोल दीजिए।
1: तनुश्री।
0: तनुश्री, नाम बहुत ही प्यारा है।
1: थैंक यू मैम।
0: तनुश्री क्या करती
1: है?
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अरे वाह, और आज ये बहुत ही खास दिन है।
1: जी मैम, आज बहुत ही खास दिन है और मेरा आगे पर कौन लगा इससे मतलब और भी खास मेरे लिए तो दिन हो गया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस खास दिन की।
0: जी आज आपकी कॉल
1: लगी और हमारे सभी श्रोताओं को।
0: जी जी, आज आपकी कॉल लगी आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, और आज हम सभी जो है मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस।
1: जी मैम, विजय दिवस।
0: जी तो आपकी कॉल पहली बार लगी है?
1: नहीं मैम, दूसरी बार लगी है।
0: तो कुछ कहना चाहेंगी हमारे वीर शहीदों के लिए?
1: वीर जवानों को तो मैम मतलब कितना कहना ना उनके लिए उतना कम है मैम, क्योंकि हम आज घर पर है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से।
0: जी जी, अगर हम सुरक्षित हैं
1: उनको सभी सभी वीर जवानों को मेरे और मेरे परिवार के तरफ से सैल्यूट है मैम, क्योंकि बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं, और उन माता उनके माता पिताओं को भी मेरा सैल्यूट है कि इतना बढ़िया बच्चों के लिए बच्चों के मतलब बच्चों को भेज रहे हैं उनके मतलब हमारे बारे में सोच कर।
0: जी जी, तनुश्री जी, हम आपकी भावनाओं को समझ गए हैं। वाकई जो हमारे वीर शहीद हैं वो हम सबके लिए इतना कुछ करते हैं जिसको हम जहाँ देकर भी कुछ भी कहकर हम उनके जो है इसको चुका नहीं सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ओके बाय।

0: कारगिल के वीरों के लिए कोई संदेश, सैनिक से जुड़ी प्रेरणादायक स्मृति साझा करना चाहते हैं, या आप कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो बस डायल कीजिए आपका अपना नंबर 7376804090। हेलो।
1: हाँ मैडम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। जी आपका शुभ नाम।
1: जी बोलिए।
0: जी आपका शुभ नाम।
1: नाम युगलाल कनौजिया है, मैं अयोध्या सैयाबाद सहनवा से बोल रहा हूँ।
0: जी युगलाल जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं सिलाई का काम करता हूँ बॉम्बे में।
0: जी जी, तो इस समय आप बॉम्बे में हैं या फिर अयोध्या में?
1: मैं अभी बॉम्बे से आया हूँ, अभी जाने वाला हूँ एक हफ्ते बाद।
0: जी कैसा लगता है, बॉम्बे शहर ज्यादा अच्छा लगता है या फिर अपनी अयोध्या?
1: नहीं मैडम, अयोध्या ज्यादा अच्छा लगता है अपना।
0: वाकई अयोध्या में कुछ तो है जो सबको खींच लेती है।
1: बहुत अच्छा लगता है अयोध्या अपना।
0: जी जी, तो बॉम्बे में आप क्या करते हैं?
1: सिलाई का काम करते हैं मैडम।
0: जी जी, तो आज आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ मैडम, गाना सुनना था बॉर्डर पिक्चर का, चिट्ठी आती है देश के ऊपर।
0: जी, तो हम आपको देश के ऊपर ही गीत सुनाएंगे, और आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारे अमर शहीदों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉर्डर से गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद। जी जी।

0: जी हाँ दोस्तों, यह दिन भारत के इतिहास में गौरव की किरण की तरह चमक रहा है, जब हमारे सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों और दुश्मनों की लगातार गोलाबारी का सामना करते हुए बेजोड़ साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों पर विजय हासिल की। वह तारीख थी 26 जुलाई। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा लहराकर शान से लहराया, जो बलिदान, वीरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का एक प्रतीक है। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और कहते हैं कि जय जवान जय किसान।
0: जी।
1: तो बॉर्डर पे हमारे जवान अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, और खेतों में किसान काम करके अपने देश का भरण पोषण कर रहे हैं।
0: एकदम, बहुत ही सही बात आपने कहा।
1: कारगिल दिवस है।
0: जी जी
1: जी, बताना चाहूंगा, कारगिल विजय दिवस है, तो बॉर्डर पे जिन भी शहीदों ने अपने प्राण न्योछावर किए, अपनी माताओं ने अपने बेटे को न्योछावर किए, अपनी पत्नी ने अपने पति को खोया, अपनी बहन ने अपने भाई को खोया, तो ऐसे सत सत नमन करते हैं हम ऐसे वीर जवान को, जिन्होंने अपने प्राणों की बाली देकर अपने देश की गौरव को बचाए रखा।
0: जी जी, बहुत ही अच्छे विचार है, और हम सभी भारतीयों को इनका सम्मान करना चाहिए, बहुत ही गर्व की बात है।
1: जी, तभी तो बताना चाहेंगे, वहाँ बॉर्डर पे कारगिल युद्ध में हमारे देश के जवान जीत कर आए, तिरंगा लहराया लद्दाख की वादियों में, और आपको बताऊं, उनकी शहादत को, उनकी बलिदान को हमेशा सत सत नमन करते हुए हमेशा अपने दिल में याद रखेंगे।
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है, और हमको हमेशा उनके जो ये जज्बात है, जो उनके बलिदान है, हमेशा दिल में कहीं ना कहीं जो है इसको जीना चाहिए, इसकी जो दर्द है उसको समझना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, कॉल
1: हमारे देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं, और मतलब हम तो यही कामना करेंगे कि आगे से ऐसा कोई युद्ध ना हो, कोई ऐसे बॉर्डर पे कोई खतरा ना हो, ताकि हमारे देश के जवान को प्राणों की बलि देनी पड़े।
0: जी जी, हमें भी यही उम्मीद है, यही विश्वास करते हैं, पर पूरा विश्वास है अपने भारतीय सैनिकों पर भी, जब भी युद्ध होगा जीत भारत की ही होगी। जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद, दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी जी।

0: पीले हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ था, या कोई विशाल रेगिस्तान या हरे भरे मैदानों में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, या उन नुकीली चोटियों पर लड़ा जा रहा था जहां ऑक्सीजन की कमी थी, तापमान असहनीय था और जमीन एक एक इंच का पूरा खून की कीमत हासिल किया जा रहा था। यह कारगिल युद्ध था एक सैन्य अभियान से कहीं ज्यादा विश्वास, दृढ़ता और बलिदान की परीक्षा थी। हेलो,
1: नमस्ते, मैं अनुराग दुबे, टोड़ी दुबे का पुरवा मिल्कीपुर अयोध्या। तो हम कहना चाहेंगे, तिरंगे में लिपट कर जो आए हैं वो देश की खातिर अपनी जान गंवाए हैं, भुला ना सकेंगे हम उनकी शहादत को, विक्रम बत्रा जैसे वीर अमर आए हैं।
0: जी जी जी, बहुत से हमारे सैनिक अमर बत्रा जी की तरह जो है शहीद हो गए हैं।
1: तो मैम, हमारे सैनिक हमें ये प्रेरणादायक विचार देते हैं, या तो तिरंगा लहरा कराऊंगा या तिरंगा तिरंगे में लिपट कराऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा।
0: ये पहचान कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय वीर सैनिकों की ही हो सकती है।
1: तो हम यही कहेंगे कि कैप्टन विक्रम मल्होत्रा ने 5140 जीतने के बाद उनका ऐतिहासिक बयान यही था, ये दिल मांगे मोरे।
0: जी जी जी,
1: जय भारत।
0: जी जी, जय हिंद जय भारत। तो आज कोई खास गीत या फिर
1: आप देशभक्ति ही सुना दीजिए, क्योंकि मैम हमारे देश, क्योंकि मैं भी आगे चलकर यही बनना चाहता हूँ, बहुत सोच रहा हूँ, लंबाई भी है, आप सबकी कृपा रहे तो हम क्या पता हम भी बन जाए।
0: जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, आकाशवाणी परिवार की शुभकामनाएं हैं, आप जरूर बने और अच्छे से देश की सेवा करें,
1: और हम कभी आकर आकाशवाणी अयोध्या में अपने विचार प्रस्तुत करें तो और अच्छा लगेगा।
0: जी जी जी।
1: और मैम आप ठीक हैं?
0: हाँ सर, मैं ठीक हूँ, कॉल करने के लिए धन्यवाद, दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: जो धरती की रक्षा में हंसकर अमर हो जाते हैं, वही तिरंगे की हर लम्हा में सदा मुस्कुराते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी अयोध्या कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
1: जी नमस्कार मैम।
0: जी आपका नाम?
1: मेरा नाम मैं मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील में जिला रामपुर से सकावत हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है
1: जी।
0: तो क्या करते हैं आप?
1: मैम हमारी किराना की दुकान है और खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी जी, तो आज कारगिल विजय दिवस हमारा पूरा देश मना रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है हमारे अमर शहीदों को, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: जी हाँ मैम, ये कहना चाहेंगे मतलब फौजी हमारे रखवाले हैं और मतलब हम अगर आराम से देश में रह रहे हैं तो ये फौजियों की ही बात है।
0: जी जी
1: जी, क्योंकि हम आराम से चैन की नींद सो पाते हैं, रात में दिन में वहाँ पे मतलब बॉर्डर पर रहते हैं।
0: जी जी जी, एकदम आपने सही बात कही है, तो कॉल करने के लिए धन्यवाद, दोबारा कॉल कीजिएगा। जी सर।

0: जब तिरंगा अपनी पूरी शान से हिमालय की चोटियों पर लहराता है तब वह केवल हवा से नहीं अपने वीर सपूतों की अंतिम सांसों से भी संवाद कर रहा होता है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम?
1: मैम मेरा नाम पूजा पांडे, ग्राम पसेरी पोस्ट हमारी बजाय जिला बस्ती से बोल रहे हैं।
0: जी क्या करती हैं आप?
1: मैम सिलाई करते हैं हम।
0: जी तो सिलाई में क्या क्या सिलती हैं?
1: मैम अभी सीख रहे हैं।
0: जी जी, जी। तो चलिए कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी
0: जी, दोबारा कॉल कीजिएगा।

नमन उन वीर वीरों को जिन्होंने अपने आज का सूर्य अस्त होने दिया ताकि हमारा कल सदैव प्रकाशमान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक। और हम बता दें कि इस कार्यक्रम को तकनीकी रूप तक आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दिए विनोद कुमार चौधरी जी ने। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: सुनत थे सखी, सुनत थे कार्यक्रम।

0: मां होय वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सकी बिल्कुल सुना थे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सकी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा कि आज के इस सफर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज के इस सफर में मैं हूं ऋचा आपके साथ। तो आइए संदेशों का सिलसिला जारी करते हैं और कार्यक्रम में पहला संदेश आया है विजय सुरलकर का, मोताला महाराष्ट्र से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, अफजाल ताज कोल सिटी ताज से। और ये अगला संदेश आया है कमल साहिनी रामगढ़ कैंट झारखंड से, रविंद्र सिंह छाबड़ा नई दिल्ली से, अनिल कुमार घोटके औरंगाबाद महाराष्ट्र से, प्रवीण श्रीमाली कंवर कॉलोनी बड़वाह से और मध्य प्रदेश से ये संदेश आया है, ओम प्रकाश राय कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, विनोद वंडलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम शर्मा गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से, गजानन येले सिद्धार्थनगर दरियापुर से। और ये अगला संदेश है रियासत हुसैन सिद्दीकी का जसपुर उत्तराखंड से, राजेश खोबर खेड़े का ये संदेश है महाराष्ट्र से, अगला संदेश निसार सलमानी का धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, नरेश मल्होत्रा खैल बाजार पानीपत से, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी का संदेश है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, और ये अगला संदेश विजेंद्र विश्वकर्मा का बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से। और ये अगला संदेश आफताब अंसारी का गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, हुकुम करमरकर का संदेश आया है बेरड़ी मध्य प्रदेश से, देवेंद्र कुमार गुप्ता कस्बा उघैती बदायूं से।

और ये अगला संदेश आया है नरेश नेताम का बगबुड़वा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर, और ये अगला संदेश आया है डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी का पदूम नगर चरोदा छत्तीसगढ़ से, रविन्द्र दास से किशनगंज बिहार से, ताज अंसारी आजाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से, राजकुमार डूडी गांव फरासी हिसार से, ज्ञान भूषण शर्मा रावर करनाल से, मोहम्मद सरफराज आलम दर्शना बाजार अररिया से, मोहम्मद कलीम अंसारी गंज डिंडवारा से, गुलाब दास मानिकपुरी का ये संदेश आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से, माखन वर्मा नानघाट छत्तीसगढ़ से, सैयद यूनुस का ये संदेश आया है जिला जालना मराठवाड़ा से, पोपट राव कुलथे का संदेश आया है बीट शहर महाराष्ट्र से, और ये अगला संदेश आया है राजेंद्र नारंग का बटिटा रोड मंडी डब्वाली से, राजू मिर्गलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से, विनायक बिंडे आकोट से, और ये अहम दयासीन बागबान का ये संदेश आया है छोटी बलिया करजत से, और ये अगला संदेश है बनवारी जयपाल का अरायन से, उदयभान पाल ग्राम रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, दीपेश वर्मा सरगांव छत्तीसगढ़ से, और ये अगला संदेश सुरेश मालोदे का है सिरडी से।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और श्रोताओं, एक सूचना, दिनांक 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से प्रसारित होने वाला सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में आंखों से संबंधित समस्याएं और उपचार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ अयोध्या से डॉक्टर गजेंद्र पाल। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा आकाशवाणी अयोध्या का नंबर 7376804090। समय एक बार पुनः सुन लीजिए, 27 जुलाई 2026 शाम 5:30 से शाम 6 बजे के मध्य दिन सोमवार। अयोध्या आकाशवाणी अयोध्या का फोन नंबर है 7376804090। सूचना समाप्त हुई। और ये अगला संदेश नाना लामसी का आया है, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से शिव कुमार चौहान बाबा कुटी रायगढ़ से। और वेद प्रकाश मिड्ढा का संदेश है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से। मोहम्मद यासीन अंजान दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। लालगिरी गोस्वामी का संदेश आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। जगमोहन सिंह प्रजापत लहोडडा बागपत से। उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। उमेश कुमार गौड़ बुलंदशहर से। और ये अगला संदेश धीरज गुप्ता कस्बा उगहती बदायूं से। रामचंद्र माखीजा छत्तीसगढ़ से। और ये अगला संदेश प्रमोद कुमार साहू बुरसरा छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। रज्जाक मोहम्मद हनुमानगढ़ राजस्थान से। शाहरून नूर अंसारी ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली बरेली से। प्रभाकर गुप्ता शनि बाजार कस्बा उगहती से। सुभाष गोदारा गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से। सोमदत्त पटियाला पंजाब से। तुलसी मस्कीन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। और ये अगला संदेश खिल्लू परवेश का आया है हरदोई नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से।

और ये अगला संदेश आया है बिट्टू भाटिया का झज्जर हरियाणा से, जीके परमार गांधीनगर गुजरात से, उत्तम नगर भगत पाकुड़ झारखंड से, सिद्धार्थ का संदेश आया है राहुल नगर अमरावती से, रामकुमार रेवाड़ सादुल शहर राजस्थान से, मनोहर मगर का संदेश है अक्षय कॉलोनी महाराष्ट्र से, धर्मेंद्र छीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, राघव बघेल का संदेश है लखान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, विनोद लखनपाल रावर करनाल से, दातार सिंह शेखावत गोविंदपुरा शीकर राजस्थान से, अजीत कसाना लदावली से, विजय भावे का संदेश है महाराष्ट्र जालना से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, संजय मार्कंडेय का संदेश है बड़ा बम चौक खंडवा से, कुंवर कृपाल सिंह परिहार आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, बनवारी लाल कुशवाहा चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ

प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

0: और भाई साहब क्या हाल है?
1: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: माँ ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
3: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
4: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
1: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वी मार्ट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।

केके के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिल्ली से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी

0: एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव

0: एवं राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्र

0: केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी अयोध्या में हमारे सभी श्रोताओं का। दोपहर के 2:30 हुए हैं। बच्चे सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आए आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: बच्चों जय हिंद। आज एक बार फिर मैं आपकी दर्शना दीदी उपस्थित हूँ आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम बाल जगत में। कैसे हैं आप सब?

0: उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के इतिहास की एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी है हमारे बहादुर सैनिकों की, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा की। इस वीरता की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लेकिन बच्चों, शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल। जब आप सभी रात में आराम से सोते हैं, तब क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के सरहदों की सुरक्षा कौन करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारे वीर सैनिक। सोचिए, अगर वे हमारे सरहदों की रक्षा ना करें तो क्या हम चैन की नींद सो पाएंगे? अब एक और सवाल, क्या आपने कभी बहुत ऊंचे पहाड़ देखे हैं? सोचिए, अगर उन्हीं पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ हो, तेज ठंडी हवा चल रही हो, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे हो, और फिर भी कोई दिन रात खड़ा होकर देश की रक्षा करे, तो वह कितना बहादुर होगा। ऐसे ही होते हैं हमारे भारतीय सैनिक। तो बच्चों, हमारे भारतीय सैनिकों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आइए सुनते हैं नीलम पांडे से वार्ता बच्चे जाने ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के बारे में। इनसे बातचीत की है यूकेजी में पढ़ने वाली हमारी नन्ही सी प्यारी सी पाविका मिश्रा ने।
1: पाविका, क्या आपको कुछ खास दिनों के बारे में पता है जिनको हम लोग दिवस के रूप में मनाते हैं?
2: यस मैम, जैसे टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रंस डे।
1: वेरी गुड। क्या आपको ऐसा भी पता है कि हमारे देश के लिए भी कोई दिवस मनाते हैं?
2: नो मैम, आप हमें प्लीज बताइए हम लोग कौन से दिवस मनाते हैं।
1: अच्छा, सैनिकों के बारे में आपको पता है कुछ? आप वीर सैनिकों के बारे में तो नाम सुना ही होगा आपने, सोल्जर्स जो हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके बारे में कुछ आपको पता है? अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सन 1999 में एक कारगिल का युद्ध हुआ था जिसको हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, है ना। यह युद्ध हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें हमारे देश के सैनिकों ने बहुत संघर्ष किया था और भारत की सेना हमारे पहाड़ों में, जो बहुत दुर्गम पहाड़ियां थी, उनके बीच में जो पाकिस्तान के सैनिक घुस करके छुप करके बैठ गए थे, उनको खदेड़ कर और भगा कर हमारे देश का तिरंगा उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फहराया था। उनके इसी देशभक्ति की कहानी को, उनकी वीरता को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।
2: मैम, कारगिल युद्ध क्यों हुआ था?
1: कारगिल का युद्ध हुआ था सन 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास, बाटलिक और टोलोलिंग जैसी ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों पे जब पाकिस्तान की सेना छुप करके बैठ गई थी और हमारी नियंत्रण रेखा एलओसी को पार करके भारत की चोटियों में चुपचाप कब्जा जमा ली थी, और उनका उद्देश्य था हमारे देश के श्रीनगर और लेह राष्ट्रीय मार्ग को बाधित करना, रोक देना, और लद्दाख के क्षेत्रों पर बहुत सारा दबाव बनाना और भारत की स्थिति को कमजोर करना। जब भारत की सेना को इसके बारे में पता चला तो हमारी देश की सेना एकजुट होकर वहां पर लड़ाई लड़ी और पूरे देश ने ये संकल्प लिया कि हमको उन सैनिकों का साथ देना है और छुपे हुए घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना है।
2: मैम, हमारे यहाँ की डोगरा रेजिमेंट में क्या योगदान दिया था?
1: जब भी हम कारगिल दिवस के बारे में बात करते हैं बेटा, तो उन सभी रेजिमेंटों को बहुत श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने इस विजय दिवस में अपना अमूल्य योगदान दिया था। इन्हीं अमूल्य योगदान के बीच में हमारे डोगरा रेजिमेंट ने भी, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, यहाँ के गौरवशाली सैनिकों ने, वीर रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें बहुत विशेष योगदान दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान डोगरा रेजिमेंट के बटालियनों ने ऑपरेशन विजय में भाग लेते हुए अपने अदम्य साहस, कर्तव्य, अनुशासन और निष्ठा का परिचय दिया था। इन डोगरा रेजिमेंट के वीर सैनिकों को हम लोग आज भी नमन करते हैं।
2: मैम, किन किन सैनिकों ने योगदान दिया था, नाम बताइए।
1: आज इस विशेष कार्यक्रम में हम उन्हीं वीर सैनिकों के बारे में बात करेंगे या अमर वीर बलिदानों को नमन करेंगे जिनकी वजह से हमारा तिरंगा आज भी गर्व से लहरा रहा है। जब भी हम कारगिल की वीर गाथा को याद करते हैं तो कारगिल के इन वीर गाथा को या इस कहानी को जानने में हम कुछ वीर सैनिकों को जरूर याद करते हैं जिनमें हमारे

0: कैप्टन विक्रम पत्रा का नाम सबसे ज्यादा उत्साह और यादगार के रूप में याद किया जाता है। इनका नाम सुनते ही साहस की एक तस्वीर सामने आ जाती है, क्योंकि इन्होंने दुश्मन की कई चौकियों पर विजय प्राप्त की और इन्होंने ये दिल मांगे मोर का नारा दिया। इसको सुनते ही हमारे जवानों में एक जोश भर गया। ये केवल शब्द ही नहीं था बल्कि एक साहस का प्रतीक था, जिसको सुनने के बाद हमारे सैनिकों का उत्साह बहुत ही बढ़ गया और उन्होंने और ज्यादा शक्ति और उत्साह के साथ युद्ध को लड़ा। बल्कि इनको बहुत सारी गोलियां लग गई थी, लड़ते लड़ते ये घायल भी हो गए थे और अपने एक अधिकारी साथी को बचाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए और इनको मरने के बाद परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसी में हम आगे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी का नाम भी याद करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जिनका जन्म हुआ था। बचपन से ही ये सेना में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे। पांडे जी 11 गौरव राइफल्स के अधिकारी बने। कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने खालू बार क्षेत्र में दुश्मन की चौकियों पर जो कब्जा करके बैठ गए थे उनको इन्होंने मार भगाया और इनको कई गोलियां लगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। एक एक करके दुश्मन की सारी चौकियों को ध्वस्त किया और भारत की विजय को सुनिश्चित किया। मनोज जी ने सिद्ध कर दिया कि सैनिकों को अपने जीवन में सबसे पहले अपना कर्तव्य होता है। अपने निजी जीवन को उन्होंने किनारे रखा साइड में और सबसे पहले उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मनोज कुमार पांडे जी को भी मरने के बाद मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी वीर सैनिकों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव जी को भी याद करते हैं। ये भी एक वीर जवान थे जो टाइगर्स हिल्स पे बहुत कठिन चढ़ाइयों में सबसे आगे चढ़े थे और चढ़ाई के दौरान ही रास्ते में उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी ये ऊपर चढ़ के रस्सियां बांधते रहे और उन्हीं रस्सियों के सहारे हमारे और सैनिक ऊपर चढ़ाई करते रहे। उनके इसी जोश और इसी उत्साह और साहस को देखकर हमारे और भी सैनिकों में उत्साह बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने और अच्छे से लड़ाई लड़ी और उनके इसी साहस को देखते हुए उनको परम वीर चक्र प्रदान किया गया, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। और ये ऐसे विजेता हैं जो युद्ध के बाद भी सेना में अभी भी काम कर रहे हैं। और एक और सैनिक का नाम आता है राइफलमैन संजय कुमार जी, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। वो 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में थे। उन्होंने 0.4875 पे हमला किया और दुश्मन की मशीन गन की भीषण गोलीबारी के बीच भी अकेले आगे बढ़ते रहे। इन्होंने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर भी हमला किया और अपने और सैनिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। जानती हो पाविका, इनकी इसी वीरता को देखते हुए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1: यस मैम।
0: यही नहीं बच्चों, ऐसे कई नाम हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग और कर्तव्य निष्ठा में भी दिखाई देती है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लिखी गई इनकी वीरता की कहानी आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, जिन्हें ये मानना और सीखना पड़ेगा कि देशभक्ति का अर्थ अपने देश का सम्मान बनाए रखना ही है। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना, हर परिस्थिति में भारत का गौरव ही सर्वोपरि है। पाविका, आपको इन सारी बातों से कुछ समझ में आया, कुछ सीखा आपने?
1: यस मैम।
0: यही नहीं बच्चों, हमारे देश में कई ऐसे नाम हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग कर्तव्य निष्ठा में दिखाई देती है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पे लिखी गई इनकी वीरता की कहानी हमारे आने वाले बच्चों को बहुत प्रेरित करेंगी, उनका उत्साह बढ़ाएंगी। आज के बच्चे ही जैसे आप लोग हैं, यही भारत का भविष्य है, जिन्हें ये मानना और सीखना पड़ेगा कि देशभक्ति का अर्थ अपने देश के सम्मान को बनाए रखना है, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना है, अपने देश की एकता और अखंडता को हर परिस्थिति में भारत के गौरव का सम्मान ही सर्वोपरि है। यदि भारत के बच्चे और युवा अपने मन में अनुशासन, सेवा, त्याग और राष्ट्र प्रेम की भावना को ले आएंगे तो हमारा देश, हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो जाएगा और इसको सबसे बड़ी शक्ति होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज हम लोग केवल इन शहीदों को याद ही नहीं करेंगे, इनके आदर्शों से, इनके जीवन से कुछ सीख के कुछ संकल्प लेंगे कि हमें अपने देश का मान और सम्मान सबसे पहले रखना है। अब समझ में आया?
1: यस मैम।
0: हाँ, और एक बात और, हमारे पास ऐसे सैनिक हैं जिनके वजह से ही हम लोग आज सुरक्षित हैं, है ना? हम लोग अपना काम आराम से कर सकते हैं। इन महान सैनिकों का ऋण हमारा देश कभी चुका नहीं पाएगा। आज के बच्चों को ये सीखना चाहिए कि हम अपने देश से प्रेम करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, अपने देश की एकता और अखंडता और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने देश प्रदेश के कानून का

0: यहाँ पे चलने वाले नियमों का सम्मान करें और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को पूरा करें। तो आज कारगिल दिवस के बारे में आपको समझ में आया?
1: यस मैम।
2: बच्चों, अभी आपने सुना वार्ता बच्चे जाने ऑपरेशन विजय के बारे में, यानी कि कारगिल युद्ध के बारे में। वार्ताकार थी हमारी नीलम पांडे और इनसे बातचीत की थी हमारी नन्ही प्यारी सी दोस्त पाविका मिश्रा ने। तो बच्चों, कार्यक्रम में अब बारी है आप सभी के लिए एक प्यारे से गीत की। तो आइए सुनते हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, सोनू निगम और उदित नारायण की आवाज में ये गीत।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: बच्चों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बाल जगत में। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी और काम की आदत के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी अपनी पेंसिल, रबर या किताब कहीं रख दी और फिर उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए? ऐसा तो कई बच्चों के साथ होता है ना? लेकिन अगर हम अपने विद्यालय का सामान हमेशा घर में एक ही जगह पर रखें तो हमें कभी परेशानी ही नहीं होगी। इसी बात पर बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारे से बच्चे चिंटो की कहानी सुनाती हूँ। चिंटो बहुत अच्छा बच्चा था। वह रोज स्कूल जाता, खूब पढ़ाई करता और दोस्तों के साथ खेलता भी था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह स्कूल से घर आते ही अपना बैग कहीं भी सोफे पर फेंक देता, या कभी बिस्तर पर तो कभी कमरे के किसी कोने में। उसकी किताबें इधर उधर, कॉपियां, पेंसिल सब खो जाती। अब बताइए बच्चों, क्या ऐसा करना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। फिर जानते हो बच्चों आगे क्या हुआ? एक दिन सुबह चिंटू जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। उसने बैग उठाया, लेकिन अरे ये क्या, उसकी मैथ की कॉपी ही नहीं मिल रही थी। वह पूरे घर में कॉपी को ढूंढने लगा। चिंटू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरी कॉपी कहाँ है? मम्मी बोली, बेटा अगर तुम रोज अपना सामान सही जगह रखते तो आज तुम्हें परेशानी नहीं होती। चिंटू उदास हो गया। देर भी हो गई स्कूल जाने में और अध्यापक से डांट भी सुननी पड़ी। उस दिन चिंटू ने अपने मन में एक संकल्प लिया। उसने सोचा, आज से मैं अपना हर सामान सही जगह पर ही रखूंगा। चिंटू ने घर में अपने स्कूल के सामान के लिए एक छोटी सी जगह तय कर ली। अब वह स्कूल से आते ही सबसे पहले अपने बैग को सही जगह पर रखता, टिफिन और पानी की बोतल रसोई में रखता है, जूता जूते रैक में और यूनिफॉर्म हैंगर पर टांग देता, किताबें और कापियां पढ़ाई की मेज पर करीने से रख देता। अब आप बताइए बच्चों, क्या आपको लगता है कि चिंटू को फिर कभी अपनी कॉपी या पेंसिल ढूंढनी पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। अब चिंटू रोज समय पर स्कूल पहुंचने लगा। उसकी

पढ़ाई और भी अच्छी होने लगी और उसके अध्यापक भी उसकी तारीफ करने लगे। बच्चों, आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि जो बच्चे अपना स्कूल का सामान संभाल कर रखते हैं, उनकी किताबें फटती नहीं, उनकी पेंसिल और रबर जल्दी खोते नहीं, उनका सुबह का समय भी बच जाता है। तो बच्चों, याद रखिए, जो बच्चा अपना सामान संभाल कर रखता है वही जिम्मेदार, अनुशासित और सफल विद्यार्थी बनता है। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि अच्छी आदतें ही आपको अच्छा इंसान बनाती है। हर किताब हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हर किताब हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हर कॉपी हमें आगे बढ़ाती है। जो अपने सामान का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाता है, वही जीवन में सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाता है। तो बच्चों, कार्यक्रम में अब आ रही है आप सभी के लिए रोचक

वही जिम्मेदार अनुशासित और सफल विद्यार्थी बनता है। तो बच्चों आज आपने सीखा कि अच्छी आदतें ही आपको अच्छा इंसान बनाती है। हर किताब हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हर किताब हमारा ज्ञान बढ़ाती है, हर कॉपी हमें आगे बढ़ाती है। जो अपने सामान का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाता है, वही जीवन में सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाता है। तो बच्चों कार्यक्रम में अब बारी है आप सभी के लिए रोचक जानकारी की। रोचक जानकारी में बच्चों आज हम जानेंगे, आओ जाने हाथियों की दुनिया के बारे में। बच्चों आज हम चलेंगे जंगल की सैर पर, लेकिन यह कोई साधारण सैर नहीं। आज हम मिलेंगे जंगल के सबसे बड़े समझदार और प्यारे दोस्त से। बताइए वह कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने, हाथी। तो आइए आज जानते हैं हाथियों की अद्भुत दुनिया के कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले रहस्य। क्या आप जानते हैं हाथी दुनिया का सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला जीव है? एक बड़े हाथी का वजन बच्चों लगभग 5000 से 6000 किलोग्राम तक हो सकता है, यानी लगभग कि 70 से 80 बड़े लोगों के वजन के बराबर। इतना बड़ा होने के बाद भी हाथी बहुत शांत और समझदार होता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि हाथी की सूंड कितने काम की होती है? हाथी अपने सूंड से खाना खाता है, पानी पीता है, नहाता है, पेड़ की डालियां तोड़ता है, अपने बच्चों को प्यार से सहलाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी करता है। एक ही सूंड से इतने सारे काम, है ना कमाल? हाथी के कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ये उसके शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। जब हाथी अपने कान हिलाते हैं तो उससे ठंडी हवा मिलती है। आपको पता है बच्चों हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, वे कई साल बाद भी अपने साथी, रास्ते और पानी के स्रोत को याद रख सकते हैं। हाथी अकेले रहना पसंद नहीं करते, वे झुंड में रहते हैं। बच्चों हाथी केवल जोर से चिंघाड़ता ही नहीं, वह बहुत धीमी आवाजों से भी अपने साथियों तक संदेश पहुंचाता है। कुछ आवाजें इतनी धीमी होती हैं कि इंसान उन्हें सुन भी नहीं पाते, लेकिन दूसरे हाथी उन्हें समझ जाते हैं। बच्चों एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 से 200 लीटर तक पानी पी सकता है। हाथी की त्वचा बच्चों लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे मच्छर के काटने का एहसास हो जाता है। हाथी एक दिन में कई किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं। हमारे भारत में अधिकतर हाथी बच्चों असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों में पाए जाते हैं। भारत में हाथी को शक्ति, बुद्धिमत्ता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों इन्हीं रोचक जानकारियों के बाद कार्यक्रम में अब बारी है आप सभी के लिए जानने की आज के प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में। तो बच्चों प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे APJ अब्दुल कलाम के बारे में। बच्चों आज मैं आपको भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्हें आप बच्चे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे जब भी किसी स्कूल में जाते बच्चों से मुस्कुरा कर मिलते, उनके सवालों के जवाब देते और कहते तुम ही भारत का भविष्य हो। अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। बच्चों डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोड़ी गांव में हुआ था। डॉक्टर कलाम बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु थे। इनके पिताजी नाव चलाते थे। वे बचपन से ही ईमानदार, मेहनती और पढ़ाई में रुचि रखने वाले छात्र थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जानते हो बच्चों, वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और बच्चों को हमेशा प्रेरित भी करते थे कि बड़े सपने देखो और मेहनत करो। इसरो में रहते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में रक्षा अनुसंधान में उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें बनी, जिससे भारत की रक्षा शक्ति को नई मजबूती मिली। लेकिन बच्चों डॉक्टर कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वो युवाओं के सच्चे प्रेरणा स्रोत थे। जानते हो बच्चों, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बहुत
सरल और सादा जीवन जीते थे। वे हमेशा समय का सम्मान

0: करते थे। बच्चों से मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो हमें सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम के को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न हैं। वे युवाओं से कहते थे, कठिनाइयों से कभी मत डरो, मेहनत और ईमानदारी को अपना साथी बनाओ। तो बच्चों, इन महत्वपूर्ण बातों के साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अपनी दर्शना दीदी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

सभी बच्चे सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देवुलकर और इनके परिजन। और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगत गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरगी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना, रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की, श्री गंगानगर से, धमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल यहीं से, मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला अश्विनी रमेश आनंद अन्वित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव। अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

देश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित दांगी ने इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से, चांदनी चौक गवई पढ़रिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा, बहादुर जिला, मंदसौर, मध्य प्रदेश।

नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: जोर जोर बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतने जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: नहीं नहीं हंसा
2: जाता। इस कॉफी हाउस के गोशे की भैंस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
2: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: काफी साहब,
4: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीनती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगन

0: चुंबी इमारतें ऋषियों मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
1: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
0: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
2: हाँ, ये तो है।
3: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी,
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर

0: गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला, और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही।

रोजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा समीर खुद

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस।
1: नहीं नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखो। हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख

फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और

0: फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत कुछ भी हो मेरी मोहब्बत अंधी क्यों ना हो लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा
2: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाज आ वरना पछताएगा जिंदगी दूभर हो जाएगी रुक जा बाज आ रुक जा

0: मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे। क्यों?
0: हाँ
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो भाई, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घुल लगा दिया है। फौजी, आंखें खोलो फौजी।
2: अरे ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहेल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख, मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: कौन? नीलम।
2: हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: ओ मेरी बच्ची, वो सोहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मैं
3: मेरा आखिरी सलाम
0: फौजी,
3: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजी,
3: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही
0: हूँ।
3: नीलम नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
0: Oh, my God.

0: उसकी ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी अभी
0: औसी, मेरी बच्ची
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: चुप हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी?
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो?
3: आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी मां तो नहीं,
1: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब्बी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे।

और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए, और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए, और अरुण को तो 3 साल अलका जी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था, और अलका जी साहब फिर आगे वहां रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्य द्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंसवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे गायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए, है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे, और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी,

0: तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो ओके, 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है, तो हमने वैसे निमंत्रण छापे उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्य द्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट ये गुनाह तो था ही हाँ। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे, तो और जैसा मैंने कहा उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फला दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई, मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट विच इज सो सैड।
1: जी जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
3: दो दीवाने शहर में।

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी।
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: एक पंजाबी में भी किया।
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्हार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात यह कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी किया था उसको लेके?
1: नहीं, टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया, हाँ। और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पतियाला का, एक था चंडीगढ़ का वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का, मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी। जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया, मराठी नाटक पंजाबी में होने लगा। यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं, वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन, जी
1: हाँ, डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहां पढ़ाया। और मेरे ये सुन के आपको, आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग,
1: एब्सोल्युटली, जलाल आगा, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर था श्याम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक की हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी,
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
0: उनको लेके फिल्म लॉन्च हुई थी संगत,
1: किसकी?
0: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
1: हाँ
0: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं, उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें
1: उसका हीरो था
0: जी,
1: हाँ राकेश।
0: बाद में बाशु दा ने एक फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें अच्छा, भी वो हीरो थे पर वो बनी नहीं,
1: वो नहीं, नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद, हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले और किसी ने मुझे

0: कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे तब, दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया।
1: शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे?
0: नहीं नहीं, अच्छा। मेरे क्लास में नहीं ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया। और हाँ, उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसने कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
1: वाह वाह वाह,
0: क्योंकि ही वाज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे। और उन्होंने कहा अरे सही तू कदी अली, ये बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्यों ना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा, और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, पर यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है, ये ख्वाब हाँ, भी नहीं था,
0: ख्वाब भी नहीं था,
1: ये जगह जिंदगी ले जाने वाली,
0: मेरी कार्य भूमि बनने वाली है 8 साल के लिए। और तब ये इश्तहार पढ़ा, जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहाँ चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
0: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात है, वाह।
0: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में, तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 magic years इन टेलीविजन। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देयर वॉज नो एग्जाम्पल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
1: जी,
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया।
1: वहाँ आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता,
0: यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन तेहरान में,
1: वो चाय की टपरी वाला,
0: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह, और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था, और इट वाज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा, तो इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, तो इट वाज, इट डिडंट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई. मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह.
1: जी जी. हाँ. पोस्टर बनाने वालों पर काम किया.
0: पोस्टर, हाँ, तो दैट वाज आल्सो

0: दैट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री. तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे. हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: पेंटेड. हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका. और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे. ढेर लगा सका, पोस्टर्स पड़े हैं और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे. और वहाँ हम पहुँच गए तो क्या बात करें वो लोग. और मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना. तो उनसे फिर बातें की तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था. और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे. तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है.
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को.
1: क्या बात,
0: तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो और हमारी कला तुम्हारे पास आती है. हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह. और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसा नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे हाँ पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी.
1: वाह,
0: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा. लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे, खुश हो जाओगे. और वो चलता है, वो नहीं बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती वगैरह वगैरह. इतने चाव से वो बोला, मैंने कहा कान छुए मानती हूँ और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो. तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई,
1: पूरी
0: गायब हो गई
1: है ना. एमएफ हुसैन मिले थे?
0: हाँ हाँ, अरे सॉरी, अरे एनएफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना. थैंक यू. मुझसे ज्यादा आपको मालूम है. क्या है, किसी ने बताया कि अरे एमएफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर
1: महाराष्ट्र में. तोबा, बड़ी परंपरा थी.
0: हो जी. तोबा तोबा, मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है. और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे तो उनसे मिले और वो बहुत ही, ही वाज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन. तो बहुत खुशी से वो हाँ हाँ मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की. और बहुत बढ़िया बोले हो, उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया. और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा. और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की, अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना.
1: बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाया.
0: हाँ हाँ हाँ.
1: ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको तोलो तो ये नाराज वाला जो
0: नहीं वो कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम बड़े चाव से. तो ये
1: आइडिया कहाँ से?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को. हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए. तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को. वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो. फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता. अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद, कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म. ऐसे नहीं नहीं दादा, ऐसे कैसे वगैरह वगैरह खूब. फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज, ये यू हैव टू डू इट, ये देश

0: जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर करके पुकारते थे
1: और खरजदार आवाज,
0: हाँ बिल्कुल माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना मतवाले, और मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो, और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया और फिर दादा उसमें रंग में आए, और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे, हाँ उन्होंने कहा वैसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक, वो उन्होंने किससे सुनाया ये कर, फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन
0: म्यूजिक डायरेक्टर, और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं, हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी जी
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा नहीं पंकज से उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो फिर उनको वही इतिहास और ये अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी,
1: कैसे मनाया,
0: मैंने कहा नहीं नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और शख्स को अपने आप
0: हेमंत कुमार बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की, इस तरह हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
1: ओहो हो हो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना पंकज मलिक जैसे, और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई बहार,
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है, 40s की फिल्म है शायद, 41 की फिल्म है, आई बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए ना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: राज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में, कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच, एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच इज नॉट एट ऑल ट्रू।
1: आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती है तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था, तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज of the sisters, हालांकि माई मंगेशकर was totally there to see the, you know, success of both her daughters right till the end, and she died at a very ripe age.
0: जी.
1: Then in my film, the love story of both the sisters have the same connection with the music director, which is again not true for Asha and Lata, as far as I know, and so on and so forth. There are so many differences. In fact, in the film, the older sister herself, Aruna Irani, dies, you know, in the film. So again, and Lata ji was with us for a long, long time. So there was nothing, really nothing. It was not at all biographical film. नहीं थी।
0: हाँ,
1: ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं, दे आर कन्विंस्ड कि नहीं ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
0: पर राकेश साहब को कैसे राजी किया?
1: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had 4 music directors.
0: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
1: Yeah, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव 4 डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका।
0: जी,
1: 4 पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वाज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टुगेदर ए सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल, हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज throughout busy and I was only free at the end of this chain, and unfortunately I was at the end, tab tak Basu Chatterjee hue,

0: अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे 7-8 लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड. एक भी फिल्म 2-3 दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक. एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So SAS didn't have a theatre.
1: अरे अरे अरे.
0: Television पे दिखाई.
1: जी जी जी.
0: तो ऐसा ऐसा हुआ. So bad luck all the way. So it's not been a जो एक happy ये होता है ना experience. So unfortunately SAS was not a happy experience for me.
1: जी. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो है उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ. एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता
0: हूँ. अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
1: जी, तो थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं.
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटक था तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही. फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था. हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है, और वो बढ़िया ये रोल करेगा. फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो. मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि ये शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है. मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट. मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं. तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट, और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था. ऐसे 5-6 दफे हुआ, और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी. तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है. और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही, और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है. और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ. तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई. अलकनंदा वॉज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे. वो लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी. और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा, जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है? वो हवा में नहीं लिखा जाता, लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है. वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह रहे हो. कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह. तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली, और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई. संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी.
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे.
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है. तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ. मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें. और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं. अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है. नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते. तो खैर मैं पढ़ने लगी, और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही. फिर आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी.

0: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी। बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा, आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं, 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से। और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या? मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। दो दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना। और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए। और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बीआर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बासु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बासु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ। और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुमके प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा। ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बासु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बासु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो? तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे। तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट। एंड देन शबाना नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर would not make a good couple, you know. तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना was thrilled to bits. और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे। ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खास तौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल। तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया, तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल
1: के डायलॉग में बात हुई थी,
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव। और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ और बदमाश

0: ना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली बोले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी, तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी, हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मेरे और काम
1: एंड देन वन डे,
0: लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी, हाँ, जी,
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है, हाँ, उसका नाम है बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा, और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी चुपड़ी
0: हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए, और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ,
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है, क्या है,
1: हाँ, हाँ। हाँ।
0: तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड,
1: क्या बात, इसको कहते हैं नहले पे दहला,
0: बिल्कुल। तो फिर काम शुरू हुआ एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य अकादमी का,
1: बिल्कुल, हाँ। और नसीर ने काफी तैयारी की थी के लिए,
0: अरे बाबा काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो
1: जी।
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है, हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के, तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है, उन्होंने कहा हाँ अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान का सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए, और जैसे हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ, जैसे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है वो इतना मेरे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर गया, ऐसे नहीं हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम ना। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली ही सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो डाली। तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए, अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था। इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है।
0: बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओ नहीं, इसलिए इस पर

0: जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ. इट्स वंडरफुल.
1: तीन अवार्ड्स मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का.
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए.
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा.
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है.
0: हाँ,
1: वो बताइए.
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था. बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट. इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए.
1: क्या बात है.
0: यस, एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर. पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब फिरोज रंगून वाला.
1: जी हाँ,
0: फिरोज रंगून वाला की किताब. तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वाज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वाज इनवाइटेड. तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से. कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे. महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहते हैं मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिर. कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटास्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है. और फिर हमारी दोस्ती बन गई. अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी. She was a very good friend of Basu's. और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे फंडिंग मिला. हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म. anyway, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब. और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला. तो फिर वैसा ही हमने किया. फिर बासु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई. सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का.
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे.
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो
1: मेरी जान, मुझे जान कहो,
0: क्या कनु रॉय.
1: हाँ.
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है.
1: जी
0: जरूर जरूर.
1: क्या बात.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532-21909।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मरा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: साथियों नमस्कार, युवाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीत संगीत ज्ञान विज्ञान मनोरंजन और तमाम रोचक जानकारियों के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त साधना मिश्रा। तो साथियों इसी कड़ी के साथ आज के कार्यक्रम में क्या है खास, आइए जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में और ज्ञान विज्ञान से मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और अंत में संस्था से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदानों का जश्न मनाता है, जिसने कारगिल की ऊंचाइयों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को सफलतापूर्वक हटाया। कारगिल एक ऐसा नाम जो जुड़ा है वीरगाथा से, बलिदान से और साहस की अनगिनत कहानियों से। दोस्तों यही वो जगह है जहां साल 1999 में भारतीय सेना ने घुसपैठ करने वाली पाकिस्तानी फौजियों से लोहा लेते हुए जीत का पंचम ऊंची ऊंची चोटियों पर लहराया था। इसी की याद में 26 जुलाई 2025 को देश में 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। हालांकि यह नाम और इसका इतिहास सिर्फ कारगिल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इस नाम के पीछे दिलचस्प इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों यह युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा LOC पार करके भारत के कारगिल सेक्टर की ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ शांति पहल करते हुए लाहौर बस यात्रा की थी, लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तानी सेना परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तान ने सर्दियों के दौरान कारगिल की 15,000 से 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर घुसपैठ कर ली। वही स्थानीय चरवाहों द्वारा भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की। वहीं पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई पर थे और भारतीय सेना नीचे से हमला कर रही थी, इसलिए यह जंग बेहद चुनौतीपूर्ण था। भारतीय सेना के आक्रामक हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को सभी चोटियों पर तिरंगा फहराकर पूर्ण विजय हासिल की।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी अब सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो।

दोस्तों अब हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान सेगमेंट में मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। दोस्तों मैग्रोव एक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो समुद्र के किनारे ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां ज्वारभाटा आता है और पानी अक्सर खारा होता है। यहां विशेष प्रकार के पौधे और जीव मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व समुद्री कटाव को रोकता है, तूफान और चक्रवात के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए प्रजनन और आश्रय स्थल प्रदान करता है, बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करता है जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है, तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता को बनाए रखता है। साथियों भारत में सुंदरवन पश्चिम बंगाल सबसे प्रसिद्ध मैग्रोव क्षेत्र है। इसके अलावा भितरकनिया, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के तटीय क्षेत्र में भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैग्रोव की घनी जड़ें समुद्री लहरों की शक्ति को कम करती है और तटीय क्षेत्रों को कटाव से बचाती है और घने मैंग्रोव वन चक्रवात और तेज हवाओं के प्रभाव को कम करने में प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। वहीं मैग्रोव की जड़ों के बीच छोटी मछलियों, झींगों और केकड़ों को भोजन और सुरक्षित आश्रय मिलता है, इसलिए ये नर्सरी ग्राउंड के रूप में भी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपने पेड़ पौधों तथा मिट्टी में कार्बन को लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं। मैंग्रोव की जड़ें तलछट और कुछ प्रदूषकों को रोकने में मदद करती हैं जिससे तटीय जल की गुणवत्ता

0: बनाए रखने में सहायता मिलती है। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में जिसमें जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते हैं या तटीय सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, मछली उत्पादन, कार्बन भंडारण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मैग्रोव वनों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन और मानव जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। दोस्तों अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का, फिर मिलते हैं आपसे।
1: आप अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं तो आइए भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अयोध्या, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमफॉर्म, बीफॉर्म, डीफॉर्म, एमएससी और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमलिट, बीलिट, बीएससी होम साइंस, एमकॉम, बीकॉम में प्रवेश हेतु भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, निकट लोहिया पुल, सीबार, सुहावल, अयोध्या में। अभी कॉल करें 7081680000।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
3: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
4: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
3: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
4: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
3: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
4: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
3: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: साथियों, युवाणी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, संस्था सेगमेंट में बात करेंगे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र या अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 160 से अधिक स्टेशनों का राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क संचालित करता है, जो पूरे देश में फैला हुआ है। भूकंप की निगरानी के अलावा NCS भूकंपीय खतरे के सूक्ष्म क्षेत्रीकरण और भूकंपीय अनुसंधान में भी सक्रिय रूप से NCS विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे बीमा कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, बिजली कंपनियों, नदी घाटी परियोजनाओं आदि को भुगतान के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों के भूकंप संबंधी डेटा और भूकंपीय रिपोर्ट प्रदान करता है। भूकंपीय डेटा और भूकंप से संबंधित जानकारी राहत कार्यों से जुड़ी एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाती है। भारत में भूकंप की निगरानी के लिए यंत्रों का उपयोग करने का इतिहास 1898 से शुरू होता है, जब 1897 के शिलांग पठार भूकंप के बाद 1 दिसंबर 1898 को अलीपुर कलकत्ता में देश की पहली भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई थी। 1905 में कांगड़ा भूकंप, 1934 का नेपाल बिहार असम भूकंप और कई अन्य शक्तिशाली भूकंपों जैसे विनाशकारी घटनाओं के कारण राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क को लगातार मजबूत करना आवश्यक हो गया था। तो युवा साथियों, अभी हम सुन रहे थे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के बारे में। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम जानेंगे कल के कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, कल चर्चा होगी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के बारे में और करियर गाइडेंस सेगमेंट में वार्ता करेंगे संस्कृत आज के समय में रोजगार और संभावनाएं। वार्ताकार होंगे अखिलेश कुमार और रोजगार समाचार सेगमेंट होगा लास्ट में। तो युवा साथियों, अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें जरूर दें। कोई शिकायत हो या सुझाव हो तो हम तक पहुंचाना ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी है uadiyodhya@gmail.com। अब वक्त हुआ आपसे विदा लेने का, इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने करियर में आगे बढ़ें। आपकी रेडियो दोस्त साधना मिश्रा लेती हैं इजाजत, और जाते जाते सुनते जाइए एक प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: अभी युवा साथियों ने सुना अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा।
2: तौल कर ही नहीं, इनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।

0: RHL Gold TMT Sariya 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी बात कार्यक्रम में,
2: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
1: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
2: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
3: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
2: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
3: 830-321-9911 पर भेज दें।
4: श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आज हम कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे देश गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला देश गीत।
5: अरे भारत देशवा के झंडा लहरात बा, बोलो भारत माता की जय। अरे

श्रोताओं, इस वर्ष पूरा देश 26वां कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकजुट है। ये दिन भारत के इतिहास में गौरव की किरण की तरह चमकता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए अयोध्या आकाशवाणी

0: @gmail.com AYODHYAKASHVANI@gmail.com
1: श्रोताओं, कारगिल विजय दिवस 1999 की उस शानदार विजय का प्रतीक है जब हमारे सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी का सामना करते हुए बेजोड़ साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों पर पुनः विजय हासिल की थी। 26 जुलाई को लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया, जो बलिदान, वीरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

कुम्हार पान बेच बरई कुम्हार गढ़े परई हमार देशवा। भैया पान बेच बरई कुम्हार गढ़े परई।

0: 14 कारगिल विजय दिवस एक वर्षगांठ नहीं है, कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये उस धैर्य और एकता की एक प्रेरक याद दिलाता है जो भारत को परिभाषित करता है।
1: यही रे धरातिया के हो, यही

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आपने सुना लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य

0: से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
0: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम सुहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपने एक लाइन सुनी होगी, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस, और हम क्यों न मनाएं ये दिवस, क्योंकि हमारे जब शहीद, हमारे जब देश के सुरक्षा करने वाले, जब हमारे सैनिक बलिदान करते हैं और देश के लिए मर मिटते हैं, तो हम उनके लिए ऐसे दिवस को मनाया ही करेंगे। कहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।
2: नफरत

अभी आपने सुना कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मंत्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्गो नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायां अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्रोत्रो वर्तते। श्री मोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26,000 वर्ष अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतम् अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति। तद्यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः संबोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते। यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य संपूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: श्री मोदी न्यगादीत् यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम-1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपणानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरवगौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रहः अभियानमधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य 4th दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापी अभियानम् अविरतं प्रचलति।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: अद्य मन की बात इति मनोगतम कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वं ग्लास्गो नगरे प्रारब्धासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु सहभागिनं प्रति एकं क्रीडकं प्रति एकः भारतीयः जयघोषं करोति। अनेनैव सह तेन विज्ञान ओलंपियाड स्पर्धानां उल्लेखो विहितः, यत्र विपुला संख्यानां छात्राणां सहभागिता भवति। अस्मिन् संस्करणे प्रधानमन्त्रिणा कश्मीरस्य पारंपरिक वागुकटस्य चर्चा अपि कृता। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशः सम्प्रति लोकल फॉर वोकल, स्थानीय वस्तूनां प्रोत्साहनम् इति मन्त्रेण सह अग्रेसरति। गणेशोत्सवावसरे POP निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनांके भारत रत्न विभूषितस्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलामस्य पुण्य

0: तिथि अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉक्टर कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृत समीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्तमासस्य पञ्चदशे दिनाङ्के आचरणीयस्य स्वातन्त्र्यदिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च माई गव्ह मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तर नवदशतमे वर्षे संवृते कारगिल समरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीय सैनिकानां अतुल्य वीरतायाः सम्माननाय अद्य अशेषे हि देशे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते। अयं दिवसः अस्मिन् संग्रामे पाकिस्तानस्य उपरि भारतस्य ऐतिहासिक विजयस्य तथा ऑपरेशन विजय इति सैन्याभियानस्य सफल समाप्तेः 27वं वार्षिकोत्सवं व्यञ्जयति। अभियानावधौ भारतीय सैन्यबलैः जम्मू कश्मीरस्य कारगिल जनपदे पाकिस्तानीय सैनिकैः आतंकवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समरांगणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्म वीर सैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपति पदासीना उक्तवती यत् सैनिकानाम् अतुल्यं शौर्यम् अविचलः संकल्पः परमदेशभक्तिश्च भारतीय सशस्त्र सेनानां पारंपरिक गरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेश कार्य मंत्रालयेन अद्य एका सुरक्षा परामर्श विज्ञप्तिः प्रसारिता, यस्यां कृष्णसागर क्षेत्रे संचरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिक पोतेषु सेवा नियोजनम् इच्छन्तः भारतीय नागरिकाः एतादृशदायित्वस्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्त सुरक्षा संकटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहम् उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93.1 धावनांकानां लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 kg मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान् इति वार्ताः।
1: अभी आपने सुना संस्कृत में समाचार, जिसे हमने अपनी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की।
2: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।

0: अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंजे सर गांव की, और हम आज आपको सुनावा रहे हैं देशभक्ति से ओतप्रोत लोक संगीत।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: अभी आपने सुना लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजी सुर गांव की। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं। 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

किया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: 5 जय हिंद। 5 देखो मीना बहनी, अपन कृषि जगत कार्यक्रम लेके हाजिर हैं। तो सबसे पहले अपने पंचन का बता दे कि आज अपने कृषि जगत कार्यक्रम में काव है। देखो चर्चा रहे तिल के खेती पे। ये के अलावा पंचन के ताई एक बढ़िया के जानकारी भी लेके आए हैं, मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां, कारण, लक्षण एवं बचाव। ये विषय में जानकारी देते हैं डॉक्टर हुक्म चंद्र वर्मा और इनसे अपने रामप्रीत निषाद भैया बतवान हैं। तो ये जानकारी सुनी जाए। ये के अलावा देखा अब आषाढ़ के महीना जाते हैं, अब सावन लाग वाला है और देखा ये मौसम में कजरी भी लेके आए हैं सावित्री श्रीवास्तव और उनके साथियों के सर में। मौसम के जानकारी के साथ ही साथ ही कल के कार्यक्रम भी अपने पंचन का बताओ। तो पंचो देखो बात है तिल के खेती के। तिल के उपयोग अपने सभी कोनो न कोनो रूप में हमेशा करी थे और अपन बहनी लोग देखा रिकेम रिकेम के ऐसे व्यंजन भी बनावा थी। यह के उपयोग जोन है ठंड के मौसम में ज्यादा होते हैं, यह लिए एक खेती भी पंचे करत हैं। ये कम पानी और कम लागत में अच्छा मुनाफा दे वाली फसल है। यह कताई बस ये ध्यान रखेगा है कि अपन जोन भूमि होए ना वो अच्छे जल निकासी वाली होए और साथे साथे हल्के दोमट माटी में अगर एक खेती अपने सब करी ना तो बहुत बढ़िया होते। यह के बुआई के ताई खरीफ माँ जुलाई अगस्त और जायद माँ यानी फरवरी मार्च दोनों मौसम माँ की जा सकते हैं। तो देखा कुछ पंचे भाई अपन लगाए भी लिए हुई हैं, कुछ लगाए के तैयारी में हुई हैं, तो अपन खेत के पहले से अपन तैयारी कर लें। और ये सहते भाई देखा मौसम भी बरसात के शुरू है तो थोड़ा सा जल निकासी वाली हल्के दोमट माटी के विषय में अपने सबका ध्यान देखा है ताकि अपन जब यहाँ लगावा जाए तो जल निकास वाली जैसे पानी ना इकट्ठा हो पाए बरसात के। ई एक एकड़ माँ एक ताई एक एकड़ खेत के ताई लगभग अपने सबका 2-3 किलो बीज के आवश्यकता होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि पंचन का यहू ध्यान दे का है कि खेते माँ जल भराव वाली जो समस्या होत है ना वो बिल्कुल ना हो के चाहे। तो एक ताई पहले से अपने सबका सतर्क रहे का है कि जो भैया जोन है तिल के जोन पौधा होते है ना ये ज्यादा पानी सहन नहीं कर पाते। ई जोन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री के बीच में तापमान सबसे अच्छा एकताई राहत है। पंचन का खेत के तैयारी के ताई खेते के 2-3 बार जुताई कई के पाटा लगाए लेकर चाहे ताकि जो माटी है ना वो भुरभुरी और समतल हो जाए। और यह के जो ये कतार में यह के बुआई करब सबसे अच्छा राहत है। ये के लिए कतार से कतार के दूरी जोन है 35-45 सेंटीमीटर जोन है अपने सबका रखे के चाहिए। और पौधे से पौध के जोन दूरी होते ना वह 10-15 सेंटीमीटर हो के चाहिए। सबसे खास बात तो यह है कि उन्नत किस्म के

0: चुनाव अपने सबका करे कहें। अब जैसे T13, RT46, RT125 और प्रताप शेखर का चयन अगर अपने पंचे करत है ना तो अच्छा लाभ मिले। तिल के खेती के ताई खेत तैयार करत के प्रति एकड़ 4 से 5 ट्राली जोन है सड़ी गोबर के खाद ओमा मिलाए और बुआई के समय रासायनिक उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है और यूरिया के संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और मिट्टी के जांच के आधार पे पोषक तत्व का डाले से अच्छा होते हैं। भाई माटी के जांच अगर अपने सब पहले से कराई लेते करोबे करे थे तो वैसे ही होते है कि जो चीज के कमी होए वही हिसाब से अपने सब उमा पोषक तत्व डाली थे। खरीफ फसल में आमतौर पे देखा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता, मूला सूखा पड़े पे अगर भाई बरसात नहीं होते पानी नहीं बरसत है तो अपने सबका चाहिए कि हल्की सिंचाई कर ले। उमा बुआई के 15 से 20 दिन बाद पहली और 30 से 35 दिन बाद यमा दौन है दूसरी सिंचाई करे का चाहिए और निराई गुड़ाई करके अपने सबका खरपतवार पहले से निकाल दे का चाहिए। यहाँ कबो कबो हरी इल्ली या जड़ गलन के समस्या भी आ जाते हैं तो ऐसे बचाव के ताई बीज का अपने सबका उपचारित करके और जरूरत पड़े तो जैविक या रासायनिक कीटनाशक के भी प्रयोग करें। यानी उपचारित बीज अगर अपने सब लगाए थे तो काफी हद तक देखा इस समस्या से अपने सब निजात पाई जाए थे। तिल के फसल जोन है पंचो लगभग 80 से 100 दिन में पक्के तैयार हो जाते हैं। जब पौधे पीले पड़े लागे ना और फली जोन है ओके सूख जाए तब पौधों के कटाई के लें। कटाई के बाद पौधा धूप में सुखाए के और डंडा से अपन पीट के बीजों का अलग कर ले। पंचो अगर अपने सब ही सतर्क रह के एक एक खेती जोन है अपने सब करी थे ना तो प्रति एकड़ 5 से 8 कुंतल तक एक पैदावार हो जाता है। तो ये लिए हम तो सोचे थे कि जौन पंचे तिल के खेती करा चाहे वो अपन एक तैयारी कर ले और जौन पंचे भाई करे हैं ओका थोड़ा सतर्कता से ओमा ध्यान दे खरपतवार जल निकासी सब अपन देखत रहे ताकि अपन फसल उचित समय पे अच्छे से तैयार हो जाए। पंचो देखो वादा किन रहा कि अपने पंचन का एक जानकारी दिवाओ। तो देखा अपने सब भाई खेती के साथे साथे पशु का पालित है मुर्गी पालित है या जौन अपने सबका सुविधा लागत है वो का पालित है चाहे मछली पालन के बात हो चाहे सुअर हो चाहे बकरी हो लेकिन जौन पंचे मुर्गी पाले हुए उनका भी देखा पहले से सतर्क रहेगा है कहे कि मुर्गी माँ भी तमाम तरह के बीमारी हो जाते हैं। तो आज ऐसा ने जानकारी लेके आए हैं पंचेती माँ मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां कारण लक्षण एवं बचाव ये विषय में जानकारी देते हैं डॉक्टर हुक्मचंद वर्मा और इनसे बतवान है रामप्रीत निषाद भैया। तो चला ये जानकारी सुना जाए और ये पंचो जौन है जानकारी पहले भी एक बार सुनावा गया रहा लेकिन भाई समय के साथे साथे कबो कबो ये सब जानकारी जो दिवाए दो ना तो पंचन का लाभ हो जाता है। तो चलो सुना जाए
1: तो कि आज मेरे पंचीती में बात बत कही हुए कि मुर्गियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां कारण लक्षण बचाओ यह बारे में जानकारी आज हमारे पंचायती में आये हैं डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा जी जो उनकी सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। तो डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा जी आपका स्वागत है मेरे पंचायती में।
2: जी धन्यवाद।
1: खेती के अलावा हम जो नगदी आमदनी के रूप में पशु पालन मुर्गी पालन सूकर पालन तमाम तरह का पालन करी थे वही में आज की मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां कहा जाते कि अगर तेज आवाज धड़ाम से निकलिए तो मुर्गी के चूजा खत्म हो गए। हम आज अपने पंचन का जो मुर्गी पालन किए हैं उनके बारे हम जाने चाहे थे कि ई मुर्गी पालन कीन जाए तो सबसे पहला काम कि कौन ऐसा बात का मुख्य बात का ध्यान दीन जाए कि मुर्गी पालन हमार बढ़िया से होए।
2: ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है।

0: मैं अपने किसान भाई जो मुर्गी पालत हैं उनका ही बतावे चाहे थे जौने स्थान पे मुर्गी पालन किसान भाई के करक है ओके चॉइस थोड़ा हमरे घर परिवार से तनी दूरी स्थान पर आए चाहिए।
1: अच्छा
0: दूसर बात यो ध्यान रखे चाहिए वह थोड़ा सा वेंटिलेटेड स्वच्छ स्थान मैदान रहे चाहिए वो करे साथ साथ किसान भाई क्यों विशेष ध्यान रखे चाहिए कितनी मुर्गी पालन हमें करेक बा माल्या 1,000, 2,000, 500 वह स्थान पे हमें जरूर ध्यान रखे चाहिए कि कितना संख्यक हमें पालन करेक बा कितनी जमीन के उबड़ खाबड़ जगह ना हो चाहिए मार्केट से नजदीक होक चाहिए वह हमें आवागमन के साधन होक चाहिए बिजली और पानी के सुविधा होक चाहिए ये तमाम बात के किसान भाई ध्यान रखे स्थान के चयन तुरंत तब करे चाहिए।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा भैया।

0: धान के चयन तुरंत तब करे चाहिए।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा भैया, चूजा पहले शुरू कीन जाते है तो कितना स्थान के जरूरत पड़ता, तो कितने स्थान में कितना चूजा कितना मुर्गी के पालन कह सकी थे हमें सब, यह तरीके शुरुआत में आप
0: कही बतावे चाहिए थे कि जैसे सपोज दैट मान लिया आप सबका 1000 मुर्गी हमें पालक है, तो 1000 मुर्गी के पालक मान लिया हमें 100 मुर्गी पालक बा, 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया हम चॉइस करते ही तो वहां कम से कम मान के चले हम 20-25 मुर्गी आराम से रख सकते थे छोटी,
1: यानी 1 मीटर वर्गा का
0: एक मीटर फार्मा, तो 10-15 जो बच्चा रही उनका हमें बढ़िया से वह रह सका थे, बढ़िया से वहां टहल सका थे और बढ़िया से वहां खान पीन कह सका थे। यह हिसाब से हमारा स्थान और मुर्गी के पालन जरूर करे चाहिए।
1: बहुत बढ़िया बात है। यह के बाद बात उठत है कि हमें सब जन मुर्गी पाला जाए यानी चूजा लावा जाए या रखा जाए, वो कौन प्रजात करे कि हमें सबका अधिक उत्पादन दे, देखभाल करे में भी, बीमारियों से बचे में भी हमें सबका जौन है सहयोग रहे।
0: जैसे लेयर बर्ड है मुर्गी मतलब अंडा दे वाली है प्रजात और मांस वाली है जो ने ब्रॉयलर कहा थे।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा किसान हमें देखा थे जोन वो ब्रॉयलर प्रोडक्शन करा थे
1: यानी मांस उत्पादन
0: जोन स्थिति है कि लगभग 30 से 40 दिन माँ 2 किलो तक या 1.5 से 2 किलो मांस उनके पैदा हो जाते है, तो ऊ प्रजाति हमारे का मतलब ये है वो के ब्रॉयलर नाम है। किसान ये ध्यान देख पा कि जोन वैक्सीन लगी हो जो के टीकाकरण कहा थे, कुछ प्रमुख बीमारियां होते जैसे रानी खेत हो गई, कुछ सीआरडी हो गई, आईवीआईआरडी हो गई,
1: यानी जोन बीमारी है चूजे में रहा थे।
0: हाँ,
1: तो वो बीमारियों से बचे था चूजन के का
0: करते माँ टीकाकरण कई के वो प्रोवाइड करावती।
1: डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा भैया, जोन मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन ताई हमें सबका चूजा लावे की बात है और 1 मीटर वर्गा कार में रखा की बात है, ये करे ताई हमें सब ई चाहिए थे कि जोन ये मुर्गी है ये में कौन कौन बीमारी होता है, इनसे कैसे बचा जाए, कहाँ से इनका उपचार मिल जाए और कैसे हमें सब उपचार कीन जाए।
0: हम आपको बतावे चाहते जैसे हम चूजा लायन और ओके पालन शुरू किए हैं तुरंत हमें ध्यान रखे पड़ा था, चारों तरफ हमें बहुत ज्यादा पानी के एक थोड़ा सा जहाँ से हमें एंट्री लेवल है वो पानी वहाँ थोड़ा सा भरा रहना चाहिए, जब भी हम अंदर जाएं और बाहर जाएं तो वहाँ पानी हमारा जो उन पैर जरूर पड़ के चूंकि धूल हो के जाए चाहिए और थोड़ा सा चूना और इंसेक्ट जो हमारे साइड में मिलत हुआ है
1: कीटाणुनाशक
0: दवाई जो भी हुआ है वो के उपयोग करके चारों तरफ जाए ना अंदर, तो वो के सुरक्षा करे चाहिए। और मुख्यतः बीमारी हम आपको बताइए, एक बीमारी रानी खेत होता है वो बहुत खतरनाक होता, अगर वो फैल जाए अपने मुर्गियन में तो पूरा 100-200 हजार मुर्गी पूरा मरे शुरू हो जाते है। एक टीकाकरण पहले से हमें 1 हफ्ता से पहले जो चूजा होते है वो हमारा टीकाकरण हो जाता है, पता हो चाहिए कि रानी खेत जो बीमारी मुर्गी के वो के टीकाकरण पहले से भयबा। दूसर बीमारी जैसे कि आप सब जानत हैं बहुत भारत में और विदेशों में प्रचलित है बर्ड फ्लू जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है।
1: अच्छा।
0: और एक जैसे आप देखिए पानी आए मुर्गी के आंख से नाक से और चोंच से और के जो उन कलगी होते है वो फूल जाए, एक लक्षण जो उन बात दिखाए लगे किसान का, और ये बीमारी अगर हो जाते किसान के जो उन मुर्गी पाला थे मामा।
1: अच्छा।
0: तो जान ले बहुत नुकसान होता है।
1: हाँ।
0: ये बीमारी हो से पहले एक जो उन बचाव है एक थोड़ा सतर्क हो चाहिए किसान का कि पहले से अपने बाड़ा के निरीक्षण अपने मुर्गी वाले बाड़ा के निरीक्षण तुरंत करे चाहिए।
1: तो निरीक्षण के का
0: हाँ वो के देखा ही जाए कि कोनो मुर्गी इस तो ना है कि जो बहुत सुस्त है पानी आवत है या झुंड में 2-4 मुर्गी कहूँ दिखात है, अगर ऐसी स्थिति देखा जात है तो तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से कंसल्ट करे चाहिए और ओके जानकारी वहीं तक तो पहुँचावे चाहिए और तुरंत ओका आइसोलेट माने वह मुर्गी के जो 10-12 के दिखात है तुरंत अलग कह दे चाहिए।
1: अच्छा, मुर्गी के बच्चा जो अलग कह दे
0: तुरंत अलग
1: मुर्गी जो बच्चा चूजा हो थे धीरे धीरे बाढ़ा थे ये कब बीमारियां दिखाई पड़त है।
0: एक बीमारी आपको बताए जैसे 2 हफ्ता 1 हफ्ता से पहले छोट रहा थे ने इनका तो इनका आप जैसे देखिए तो बड़ा सुस्त रही है, अगर बीमारी है ये तो इनके पंख में सुस्ती रहे और चलिए ना बैठ जाइए कहीं जाए किनारे एक्टिव नहीं दिखेंगे मतलब चलेंगे नहीं।
1: हाँ।
0: तो ना ये दाना लेंगे ना पानी लेंगे ना ये जो है इस तरह की बीमारी अगर दिख
1: अच्छा।
0: रही है तो समझ लीजिए कि बड़ी दिक्कत है। और दूसर बीमारी और हम बताई थे जो बच्चेपन में आ जाता है जो ई कोलाई होता है जो

0: कोलाई का होत
1: है? कोलाई एक बैक्टीरिया होत है जो पेटे में इकाव करत है, इसे पेचिस टाइप का पीला पीला पदार्थ निकाले।
0: अच्छा।
1: और इससे जो जोन चूजा कुछ खाए वो तुरंत निकल जाए, करे शरीर में कुछ न लागे, ई कोलाई इन्फेक्शन बोलत है। एक जोन बा इन्फेक्शन हमें कैसे रोके, एक मल्टी विटामिन हवा करत है, एक पानी में डाल के जरूर हमें देख चाहिए कि जोने से ई कोलाई इन्फेक्शन बचा,
0: यानी बीमारी से बचा, इनका स्वास्थ्य भी,
1: इनके स्वास्थ्य भी ठीक रहे।
0: अच्छा डॉक्टर हुकुमचंद ब्रह्मा भैया, ई का बताइए कि कौन प्रजाति मुर्गियन कैसन है जोन में कम बीमारी हो?
1: जोन देसी नस्ल होते है जैसे कैरी प्रिया, बनराजा और उसके बाद में एक आती कड़कनाथ।
0: अच्छा।
1: हमा सम्मा बीमारी तनी कम रहत है।
0: हाँ।
1: ये सब देसी नस्ल में आवत हैं।
0: हाँ।
1: अगर किसान इनके अगर प्रोडक्शन लेते हैं तो ये जरूर है कि इनके पैसा कास्ट इनके ज्यादा मिलत है, लेकिन इनके जो समय ज्यादा लागत प्रोडक्शन में।
0: हाँ।
1: तो अगर ये मुर्गी के पालन करत इन किसान भाई तो हमें दिखात है कि हमें ज्यादा बीमारी ना होत है।
0: अच्छा,
1: जैसे कारी प्रिया, बनराजा और कड़कनाथ जोन प्रजातियां हैं, अगर इनका पालन करत है तो इनमा बीमारी बहुत कम होता है, इनके को ज्यादा हमें देखो रेक कम करे पड़ा।
0: अच्छा डॉक्टर भैया, एक बात और ध्यान में आई कि हम पूछे चाहे थे आपसे कि यह समय तो वर्षा का टेम है।
1: हाँ।
0: और कभी बिजली कड़कत है।
1: हाँ।
0: गरजत है।
1: हाँ।
0: बरसत है।
1: हाँ।
0: और कभी घाम होता है, कभी जाड़ा पड़त है, एकदम चुटबुने होता है।
1: हाँ।
0: तो कौने ऋतुअन में कौने मौसम में कौन प्रजाति का मुर्गी पालन की जाए कि हमारे सबका उत्पादन बढ़िया हुए?
1: जैसे बरसात माह देखा जाता है कि जोन हमारे बॉयलर वाली प्रोडक्शन बा, यह माँ बीमारी चूंकि विषाणु और बैक्टीरिया बहुत एक्टिव हो जाते हैं, चूंकि मॉइस्चर चारों तरफ फैला होता है, यहाँ जोन बाटे ज्यादातर बीमारी फैले के बहुत चांस होता है। ये हमा किसान भाई बहुत सतर्क रहे हैं वर्षा ऋतु में, क्योंकि इनके जोन बा चूना हुआ या और जोन तरफ पानी है, जोन कपड़ा पहन के अंदर जाता है, बाहर जाता है मार्केट से, यह हम बताई थे कि जब अपने मुर्गी फार्म में एंट्री करें तो चप्पल हो गया, वस्त्र हो गया, तो वहीं निकाल के रख देख चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैले, मतलब और ओके बचाव ना हो पाई। ये
0: अच्छा।
1: भी वर्षा ऋतु में बहुत ध्यान देख पा, और यह स्थिति हमें जाड़ों में ज्यादा ध्यान देख पड़ता है।
0: अच्छा डॉक्टर भैया, मुर्गी पालन में हमें सबके कौन बात का ज्यादा ध्यान रखे के बाटे? कहे भैया, एक बार हम मुर्गी फार्म में गए तो मुर्गी फार्म का मालिक कहन भैया आराम से आहिस्ता से तेज जोर से न बोल, धीरे से देख लो।
1: ये बात
0: का बात कहके बताऊं?
1: ये भी बात हम बताएं आपको, एक चीज तो जैसे कि ये बर्ड हमारी जो है काफी एक्टिव, बहुत ज्यादा भागने लगती है, एक दूसरे पे चढ़ने लगती है, तो वह एक्टिव आवाज ज्यादा होने से फार्म का डिस्टर्ब हो जाता, तो वहाँ हम बहुत शोरगुल ना करें, बहुत आवाज ना करें, बहुत तेजी से ना बोलें, जिससे कि पूरी बढ़ चुकी एक दूसरे पे चढ़ने लगेंगी, एक दूसरे में भागने लगेंगी, तो उससे ये होता है कि वहाँ पर इंजरी या कुछ भी और होने का चांसेस बढ़ जाता है।
0: बहुत
1: तो ये तरह से हमें थोड़ा सावधानी से मुर्गी फार्म में एंट्री करे चाहिए, और कुछ बीमारियों अंदर हो जाती जैसे कि बहुत सावधानी से केहू का फार्म एंट्री करे चाहिए, कपड़ों बदल लेक चाहिए, जूता चप्पल या नाक मुंह जो बार ढंप लेक चाहिए
0: मुर्गियों से का अपने मनाई का बीमारी के शंका रहा
1: है। बिल्कुल शंका रहता है, जूनोटिक डिजीज बोला थे, और कभी कभी की मुर्गियों से आदमी भी बीमारी फैल जाती है और आदमियों से मुर्गियों भी बीमारियां फैल जाती हैं।
0: अच्छा।
1: तो यहो बचाव के लिए हमें बहुत सावधानी रखे पड़ा था, जब फार्म हल है तो हमें अपन वस्त्र बदल के या जोन बाटे अपने जोन चप्पल जूता है उसका बाहर निकाल के तब हमें फार्म अंदर जाके देख रेख करे के चाहिए, इससे आपके बहुत अच्छा प्रोडक्शन फार्म के ले सकते, अधिक उत्पादन ले सकते किसान भाई। कोनो जब बीमारी ना होए फार्म अपने तो समय से उनके ग्रोथ होए, समय से उनका प्रोडक्शन होगा और अच्छे से उसके सेल हुए किसान भाई कह सकते।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर हुकुमचंद ब्रह्मा भैया, आप समय निकाल के हमारे पंचायती में आयो, पंच बहन के तरफ से जो मुर्गी का पालन करते हैं उनके तरफ से, अपने आकाशवाणी परिवार के तरफ से यह बतकैया के लिए आपका दई थे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पंचायत देखा अभी ये भेंटवार्ता सुना गया। मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव, ये विषय पे बतावते हैं डॉक्टर हुक्मचंद वर्मा और इनसे बतवान रहे रामप्रीत निषाद भैया। तो उम्मीद है कि अपने पंचन का ये जानकारी नीक लगे हुए और वे सतर्क हो के सजग हो के मुर्गियन के देखभाल पहले से करिए ताकि उनका वो माँ कोनो प्रकार के नुकसान ना हुए। अब पंचो थोड़ा भाई पंचायती में मन मनसायन भी हो के चाहिए तो देखा सावित्री श्रीवास्तव उनके साथी के शर्मा एक कजरी लेके आए हैं। चलो एक सुना जाए।

पंच देखो सावित्री श्रीवास्तव के साथ इनके सर में ये गजरी सुना गए। देखा गीत गाने जब बीचे बीचे में कार्यक्रम में हो जाता है ना तो थोड़ा सा अपने सब में ताजगी आ जाता है और फिर काम वाम करे में मनो लागत है। तो कजरी सुन के सबके जीव खुश हो गया हुए और हम का नीक लागे। लेकिन अब देखा समय कहा थे कि अपने सब का मौसम के जानकारी पंचन का दे दे और कल के कार्यक्रम भी बता दे। तो जोन आज मौसम की जानकारी मिली है ना वो हमारा अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जोन की सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस जोन की सामान्य से 1.5 अधिक रहा। आर्द्रता अधिकतम 90% और न्यूनतम 64%। हवा की गति 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जो दिशा है वो दक्षिणी और पूर्वी और वर्षा जोन है 5.6 मिलीमीटर होए की संभावना है। पूर्वानुमान यही है कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छाए रहे और साथ ही साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा के साथ वर्षा भी जोन है वो के भी संभावना है। और देखा लगे हाथ कल के उदय जो कार्यक्रम कल रहे कृषि जगत जेमा चर्चा के विषय रहे हरी खाद अपनाएं मृदा स्वस्थ बनाएं। एक के साथे साथे एक भेंट वार्ता भी सुनवा मजाए खरीफ की प्रमुख फसलों में लगने वाले रोग कारण लक्षण एवं बचाव ये विषय में जानकारी दी है डॉक्टर सुभाष चंद और इनसे बतवान है मनोज पांडे भैया। और गीत गोने और बाजार भाव मौसम ये सब तो अपने कार्यक्रम में चार चांद लगोबे करते हैं। मुला घड़ी के इशारा है कि अब पंचन से विदा ले जाए तो अगले कार्यक्रम में फिर मिला। तब तक का मीना बहनी का दे अनुमति जय हिंद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

8:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शेर और गीत। 9:15 पर होगा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में 7:15 पर होगा कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 पर होगा कार्यक्रम सुर संगम। कल 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें कल आज की बात का विषय होगा

0: केवल कहीं नहीं सुनी भी और होगा फिल्म संगीत व समाचार पत्रों से। कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर होगा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2 बजे आप सुनेंगे गीतांजलि। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंगना, जिसमें कल चर्चा होगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि और शौक को बदले व्यवसाय में विषय पर, और होगा लोक संगीत व घरेलू सुझाव। कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें कल चर्चा होगी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना विषय पर, और कैरियर गाइडेंस में होगा संस्कृत आज के समय में रोजगार और संभावनाएं। वार्ताकार होंगी अखिलेश कुमार और होगा रोजगार समाचार। कल शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सजीव फोन इन, विषय होगा बरसात के मौसम में आंखों से संबंधित समस्याएं और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गजेंद्र पाल। शाम 6:10 पर होगा कृषि जगत, जिसमें कल चर्चा होगी हरी खाद अपनाएं मृदा स्वास्थ्य बढ़ाएं। भेंट वार्ता होगी खरीफ की प्रमुख फसलों में लगने वाले रोग कारण लक्षण एवं बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र, भेंटकर्ता होंगे मनोज पांडे। 8:15 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर होगा हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
5: पार्टी चाहिए,
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत

0: अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है।
1: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
0: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
1: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
0: प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आज बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: प्रदेश में पिछले दिनों चलाए गए माँ के नाम एक पेड़ अभियान की प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सराहना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति आभार जताया है। श्री योगी ने कहा कि इस अभियान में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का जिक्र पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की बड़ी सफलता का सम्मान है। वहीं बिजनौर जिले की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हर्बल टी तैयार किए जाने की तारीफ किए जाने पर समूह की महिला सदस्य ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। जैसे कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदुर हर्बल टी के बारे में बात की है, इससे लग रहा है कि जैसे जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन सबके मन की बात कर दी है। जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की एक्सीडेंटल बीमा कवर योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय सरकारी

0: सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवारजनों को लाभ मिलेगा। कैशलेस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनकी क्षमताओं को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री योगी ने कहा कि बदलते दौर में सोशल और डिजिटल मीडिया के सही उपयोग की जरूरत है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य रखते हैं। हर शिक्षा के लिए, हर छात्र के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको पारंगत करेंगे, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कैसे हम उस फील्ड में अपनी धमाकेदार उपस्थिति के माध्यम से उसको अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, समाज के अनुरूप और देश के अनुरूप बना सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आज मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिल रही है। बदायूं जिले के उजानी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले सरकार ने नई विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया है। इसमें 3 सदस्य हैं। इसकी कमान आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने साल 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली के साथ कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वांचल में कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये क्रम 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने अपनी लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
3: आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
4: फौजी भाइयों, एक ऐसे सिंगर को मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ जिनकी आवाज सुन के लगता था जैसे 100 आवाजें एक साथ गा रही हो, जैसे एक ऑर्गन बज रहा हो। हेमंत कुमार साहब। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मिल गया।

0: मिल गया।
1: फौजी भाइयों, मदन मोहन साहब एक कमाल के कंपोजर हुए हैं और सोने में सुहागा लता जी की आवाज, इन दोनों ने मिलकर ऐसा ऐसा काम किया है जो हमेशा याद रहेगा।

फौजी भाइयों, मैं आपको एक अपना भजन जरूर सुनाना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि इसी भजन से मेरी पहचान बनी। कई बार होता है मैं कहीं जा रहा हूं और पीछे से कोई ये भजन गुनगुना के मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन,

तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने गायक भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जय।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे अकॉर्डियन पर अरुण पौडवाल की धुने। आज की फिल्म है मेरा नाम जोकर।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए दिलीप सिंह की लिखी झलकी, चोर के घर मोर।
1: जीवन के सफर में राही
2: भाई,
1: भाई नहीं राही यार, ये पुराना गाना जो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ।
2: पर तू ये बता कि तू बेलापुर को भूल गया?
1: बेलापुर
2: जहाँ तू पैदा हुआ था।
1: अरे बेलापुर को कैसे भूल सकता हूँ।
2: हाँ, वहाँ बेलापुर में तेरा एक चाचा है राम भरोसे, है कि नहीं?
1: है।
2: उसका एक बेटा है पोला, है कि नहीं?
1: है।
2: वो पोला तेरा भाई हुआ, है कि नहीं
1: हुआ?
2: तो फिर मैं ही तो पोला हूँ।
1: भोले भोले भोले भोले।
3: भाई तू यहाँ क्या कर रहा?
4: मैं पहले तो नौकरी ढूंढता रहा, जब नौकरी नहीं मिली तो तुझे ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे तू क्या करता?
1: मैं नौकरी करता हूँ।
4: तो मेरी भी लगवा दी।
1: नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए नौकरी करना बड़ा मुश्किल काम है।
4: मेरे लिए नौकरी बहुत मुश्किल काम।
1: हाँ।
4: तो फिर तू कैसे करता है? तुझे तो ना दूध धोना आता है, ना हल चलाना आता है, ना बकरियां चलाना आता है।
1: नहीं, मैं दूध धोने का काम नहीं करता।
4: अच्छा, तो फिर तू क्या करता है भाई?
1: मैं अब तुझे क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ?
4: चल छोड़, क्या समझाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले चल। वहां जाके पहले तो पेट भर के मेरे को रोटी खिला।
1: बाप रे।
4: उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। तूने मुझे नौकरी लगवाना तो नौकरी लगवा देना, नहीं तो तू नौकरी लगा, मैं तेरे घर बैठ के रोटियां तोड़ा करूंगा।
1: लेकिन देख, तू मुझे बहुत महंगा पड़ेगा।
4: अच्छा,
1: खैर मैं कोशिश करता हूँ कि शायद तेरी नौकरी लग जाए।
4: हाँ,
1: देख, मैं तुझे अपने बॉस के पास ले जाता हूँ।
4: हाँ, हाँ,
1: मेरी हाँ में हाँ मिलाना,
4: बिल्कुल
1: बीच में नहीं बोलना।
4: ना जी ना।
1: अगर हमारे बॉस खुश हो गए तो तुझे नौकरी मिल जाएगी।
4: चल फिर,
1: आजा फिर।
5: मंगल सिंह।
1: ये सर,
5: ये तेरे साथ जानवर कौन सा?
1: नहीं सर, ये मेरा भाई है और भाई ये मेरे बॉस है, मैं इन्हीं का नमक खाता।
4: अच्छा, तो इनका नमक खाता है?
1: हाँ।
4: तो इसका मतलब है कि चीनी के लिए

0: दाल के लिए आटे के लिए सब अलग अलग बॉस रखे हुए।
1: बॉस आप इसे भी नौकरी पे रख लीजिए।
2: देखो मंगल सिंह, हमारे धंधे में आदमी एक बार अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। सुनो, ये लड़का भरोसे का है?
0: तूने मेरे बाप का नाम नहीं, मैं राम भरोसे का लड़का हूँ जी।
2: खुश हुआ। जबान तो खूब चलती है।
0: अंकल मेरा तो सब कुछ चलता है जी, हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ चलता है, कभी कभी थोड़ा बहुत दिमाग भी चल लेता पैदल। आंटी आंटी आंटी जी, आप क्यों बार बार दांत निकाल रही हैं?
3: खबर ला क्यों मुझे आंटी कहा तो?
4: यार अब मैं इसे दीदी तो कह नहीं सकता क्या? अच्छा नीना जी, देखे आप मेरी तरफ बार बार देख के हंस रही हैं, मेरा कोई कुर्ता फटा हुआ है या मैंने कोई गलत बात कर दी?
3: गलत तो तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम शायद जानते नहीं हो हमारे बॉस गाय और भैंस का धंधा नहीं करते।
4: वो तो इसकी शक्ल से ही लग रहा है, इतनी डरावनी शक्ल देख के गाय दूध तो क्या पानी भी नहीं देगी।
5: वैसे आपके ये बॉस करते क्या है जी?
2: मंगल सिंह
6: ये सर
2: तो कुछ भी नहीं जानता, ये हमारे किस काम आएगा?
1: बॉस सीख जाएगा, मैं सिखा दूंगा।
2: सुनो, तुम चोरी करना जानते हो?
5: लो सर जी, अपने गांव में पेट कैसे भरते थे चोरियां कर करके, तो आज तक पेट पालते रहे।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा नाम है जी भोला।
2: भोला जी, गेंदो खुश हुआ।
4: खुश हो गई।
2: अरे डाकुओं में किसी का नाम भोला तो मैंने सुना नहीं। डाकुओं के नाम होते हैं मंगल सिंह, शेर सिंह, बब्बर सिंह, गप्पल सिंह, भोला।
5: देखे देखे सर, आप ज्यादा हंसे मत, आप मेरी माँ की मजबूरी समझने की कोशिश करो।
2: क्या है तुम्हारी माँ की मजबूरी?
5: भाई उसे बचपन में तो नहीं पता था ना कि मैं बड़ा होकर इतने बड़े डाकू के रुतबे को हासिल करूंगा। नहीं तो वो भी को मेरा नाम शेर चेता सिंह। वैसे यार तुम लोग मुझे डाकू बना रहे हो।
2: हाँ।
5: तो कोई बात नहीं, मैं भी अपना नाम बदल कर मगर सिंह रख लेता हूँ जी।
2: डाकू मगर सिंह अंडर ट्रेनिंग। वो दूर लाल कोठी देख रहे हो?
5: दूर अब इतनी भी दूर नहीं है जी, पर देख रहा हूँ वैसे।
2: वहाँ जाओ।
5: हाँ जी।
2: और डाकुओं की तरह उनका कलर टीवी विद रिमोट उठा लाओ।
5: अच्छा,
2: अगर तुम बगैर पकड़े जाने के ये काम कर दो तो समझ लो तुम कामयाब हो गए और तुम्हें हमारे पास नौकरी मिल गई।
5: क्या बात कर रहे हैं सर जी, मैं तो अपने गाँव में मुर्गियाँ चराता रहा हूँ जी, जो कुड़ करके कभी भी आदमी को पकड़वा सकती है। ये बेचारा बेजान टेलीविजन क्या बोलेगा।
2: ठीक है, निकल लो पतली गली से।
5: अभी गया जी।
7: बॉस आपने भोले को भेज तो दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अनाड़ी पकड़ा ना जाए।
2: मुझे अम्बो खुश हुआ। अरे पकड़ा गया तो तेरी जान छूट जाएगी एक जबरदस्ती के बने हुए मेहमान से।
7: लेकिन बॉस मुझे डर है कि कहीं हमारे बारे में कुछ बता ना दे।
2: उसे हमारे बारे में पता ही क्या है जो बता देगा। सुनो मंगल।
1: यस बॉस।
2: तूने उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया?
7: मेरे साथ ही रह रहा है साहब, क्योंकि मेरे विलेज का आदमी है।
8: बॉस, वो आ रहा है
2: पैदल।
8: हाँ जी पैदल।
2: सुनो, क्या टीवी उसने सर पे उठाया हुआ?
8: वो टीवी नहीं जी।
2: तो क्या बगल में है?
8: नहीं।
2: तो फिर वो चोरी नहीं कर सका। मेरी पिस्तौल
8: ये लीजिए, ये लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं बॉस, नहीं, जान से मत मारिएगा। पहली बार तो बड़े बड़े डाकू भी नाकाम हो जाते हैं।
2: हर किस नहीं।
5: गुड मॉर्निंग सर। आ गया। गुड मॉर्निंग जी।
2: गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी सर।
2: टीवी कहाँ है?
0: टीवी वो दूर लाल कोठी में जी।
2: लाया क्यों नहीं?
0: लाया क्यों नहीं?
2: कोठी के अंदर कितने आदमी थे?
0: आदमी तो एक भी नहीं था जी।
2: तो फिर क्या औरतें थी?
4: औरतें होती तो मैंने वापस आना था जी।
5: मेरे एक बच्चा था जी वहाँ पर।
2: सिर्फ एक बच्चा, फिर भी तुम खाली हाथ लौट आए?
5: मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ सर जी, मैं तो पूरा का पूरा बच्चा उठा लाया
2: हूँ। खुश हुआ
5: फिर? खुश हो गई।
2: लेकिन मैं क्यों खुश हुआ?
5: यही तो मैं पूछ रहा हूँ,
2: बच्चे का मैं क्या करूँगा?
5: हाय हाय हाय हाय हाय हाय।
4: اتنا بڑا جرائم کا دھندا کرتے ہیں آپ، اخبار نہیں پڑھتے؟ میرا مطلب ہے کہ آج کل تو اخباروں میں روز نکلتا ہے کہ بچے اٹھانا تو بہت فائدے کا کام ہے سر جی، ہم نے بچہ اٹھا لیا، انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمارا بچہ گم ہے، ہم نے ان کو خبر کر دی کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، بچہ چاہیے تو رات کے 12 بجے پل والے قبرستان میں 10 لاکھ روپے لے کے آ جاؤ، بچہ لے جائیں گے، 10 لاکھ

0: जाएंगे आप 10 लाख का कलर टेलीविजन ले लेना, मैं नवी कमीज संभालूंगा, मैंने लगन का काम।
1: उसे यहाँ ले आओ ताकि हम भी एक नजर देख लें।
0: तौबा तौबा, ये नहीं हो सकता।
1: क्यों
2: क्यों नहीं हो सकता
0: भाई? भगवान ने आप लोगों की शक्लें इतनी डरावनी बनाई है, बच्चा बेचारा देखेगा तो समझेगा।
2: बच्चे को मालूम है कि तुम उसे उठा के लाए हो?
0: ना जी ना, वो तो समझ रहा है कि अपने मामे के घर आया।
1: वो ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि अखबार के दफ्तर में कोई गुमशुदा बच्चे का इशार देने आया है कि नहीं।
0: और ठहरिए साहब, ये अभी बहुत जल्दी है जी।
1: क्यों क्यों?
0: अब भाई मैं 4 दिन से घर से भागा हुआ हूँ, मेरा तो आज तक इशार आया नहीं, और वो बच्चे को बचाए वो तो जुम्मा जुम्मा 4 मिनट हुए उठा के।
2: तुम्हारे बाप ने तो इसलिए इश्तहार नहीं दिया कि चलो गुम हुआ तो जान छूटी।
0: एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी बातों का कीचड़ मेरे कुर्ते पर पड़े छान लें, पर अपने होने वाले ससुर के बारे में ऐसा मत बोले, माइंड कर
1: देगा। खुश हुआ,
0: फिर खुश हो गई।
1: सुनो, मैं जरा देख कर आता हूँ कि हमारा सोना लाने वाला जहाज पहुंच गया है या नहीं।
0: हम बॉस, मैं भी आपके साथ चलूंगा जी।
1: मेरे साथ?
0: हाँ जी।
1: क्यों भाई?
0: अरे मैंने आज तक कभी जहाज नहीं देखा सर।
1: कोई जरूरत नहीं, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे तुम्हें जहाज।
0: अच्छा जी, चलो ठीक है, अब मैं भी फिर चलता हूँ जी।
2: ओके बॉस।
1: ठीक है, मैं 2-3 घंटे में लौट के आता हूँ।
2: बाय बाय।
0: अच्छा मंगल, मैं भी चलता हूँ।
3: अभी गया अभी आया, हम दो और हमारा एक।
0: हेलो, नमस्कार जी, मगर सिंह बोल रहा हूँ जी, मैं बहन जी। नहीं आपने पहचाना नहीं जी मुझको? पहचानते कैसे, आपसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात जो नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी, ना जी फोन तो मैंने इसलिए किया है जी कि मैंने सुना है कि आपका बच्चा गुम गया, मुझे कैसे पता लगा? ओ मैं ही तो बच्चे को किडनैप करके ले आया। हाँ,
3: अब पड़ी ना बात खोपड़ी में।
0: अगर अपना बच्चा जिंदा चाहिए, 10 लाख रुपया लेकर पुल वाले कब्रिस्तान में रात के 12 बजे आ जाना। हाँ, पर बात सुनो ध्यान से, नोट नवे नकार होने चाहिए, मैले नोट मत लेना सुनिया, मैले नोट होंगे तो बच्चे को भी मैला कर दूंगा। और खबरदार, अगर पुलिस को बताया तो बच्चे को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि ढूंढते रह जा। मैं जाके इसकी माँ को उठा के लाता हूँ जी, अभी आया।
1: दोनों
2: को ले आएगा तो रैंसम ज्यादा मिलेगा।
1: नहीं नीना, गड़बड़ हो जाएगी, तुम जरा फोन मिलाओ, मैं बात करता हूँ।
2: नहीं नहीं बॉस, फोन करने से क्या फायदा है, वहाँ तो कोई होगा ही नहीं, भोला उन्हें उठा के ले आ रहा होगा,
0: रास्ते में होगा बॉस।
1: मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तुम उस औरत और बच्चे को मेरे सामने पेश करो, मैं उन्हें गोली से उड़ा दूंगा।
2: नहीं नहीं, नहीं बॉस, बच्चा बहुत प्यारा है।
1: हाँ। वो मेरे लिए फांसी का फंदा बन सकता है। वो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये भोला हमारे लिए मुसीबत बनकर रहा है।
0: एक्सक्यूज मी सर, आप ये कैसे कह सकते हैं?
1: क्यों?
0: मैं तो आपके लिए 20 लाख का बॉन्ड लेकर आया हूँ।
1: वो बॉन्ड कहाँ है?
0: वो यहाँ है, मैं अभी पेश करता हूँ।
1: मेरी बंदूक।
0: भांजे भांजे, अपनी माँ के साथ आ जाओ।
4: पापा, तो तुम इन गुंडों का सरदार हो?
0: शक है जी?
4: मुझे तो कहते थे कि बिजनेस के चक्कर में आता जाता रहता हूँ, तो ये है तुम्हारा बिजनेस, चलाओ चलाओ हम पर गोली चलाओ।
1: लक्ष्मी, अबे ओ भोले के बच्चे, मैंने तुम्हें लाल कोठी में जाने को कहा था, तुम हमारे घर कैसे चला गया?
0: ओ सर, मैं यहाँ कलर ब्लाइंड हूँ जी, मुझे रंग की गलती लग गई होगी।
1: अच्छा, तू कलर ब्लाइंड है, तेरी तो अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई नहीं हिलेगा।
5: और बंदूक को नीचे फेंक दो, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा एक एक को। हम पुलिस के आदमी,
1: पुलिस के आदमी हम लोग।
0: माय गॉड,
1: मुझे बहुत खुश हुआ। अरे पुलिस तो पकड़ लीजिए इसे, इसने बच्चे को अगवा किया है। हाँ। पकड़ लीजिए इस भोला को।
6: ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं।
1: क्या कहा?
6: और सर एक और खुशखबरी है, हमने इनके गोदाम पे छापा मारा है और सारे गोदाम को सील कर दिया है।
0: वेरी गुड। और इनका सोना जब्त कर लिया?
6: जब्त कर लिया सर।
0: इनके आदमी पकड़ लिए?
6: सारे पकड़ लिए सर।
0: वेरी गुड, बैकअप।
1: अबे भोले, तू पुलिस इंस्पेक्टर है?
0: अदावर्ज है।
1: ऊपर से भोला, अंदर से बम का गोला।
0: अदावर्ज है।
4: कम से कम तुम्हारी तरह ऊपर से भोला और अंदर से बदमाश तो नहीं है।
0: She's right.
1: भोले, अगर मुझे पकड़ना था तो मेरे बीवी बच्चों को क्यों उठा लाए?
0: इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से मुजरिम परिवार समेत मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। अब आप जल्दी से आइए बाहर, वैन आपका इंतजार कर रही है।
7: गोली

0: जला दूं।
1: जला दो।
0: लेकिन बॉस बंदूक तो मेरे पास है थी।
2: बंदूक तो यहाँ है। थैंक यू नीना, थैंक यू।
1: नीना तुम भी इनके साथ मिली हुई हो?
3: अब तक तो नहीं थी बॉस, लेकिन आज मैं भी नेकी और बदी के रास्ते में फर्क जान गई हूँ, इसलिए आज से आप मुझे इन्हीं के साथ समझिए।
4: ठीक है लक्ष्मी, मुझे डर है कि तुम्हारा और बच्चे का क्या होगा। तुम लोग कहाँ रहोगे?
3: हम कहीं भी रहें, कम से कम तुम्हारे साय से बहुत दूर रहेंगे।
4: लक्ष्मी तुम भी?
3: मैं बदली नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पति के साथ नहीं रहना चाहती जो चंद चांदी के टुकड़ों की खातिर अपने परिवार को बेचने को तैयार हो। हाँ, अगर आप जेल से सुधर कर आए तो मैं आपको इंतजार करती, जरूर मिलूंगी।
1: बस ये तो वो वाली बात हो गई, स्मगलर के घर बगलर।
5: नहीं अंकल, इसे कहते हैं चोर के घर मोर।
6: अभी आप सुन रहे थे झलकी चोर के घर मोर। इसे लिखा दिलीप सिंह ने, निर्देशित किया कमल दत्त ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM एंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड आई केयर फॉर यू।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुनैन आई हॉस्पिटल नियावा फैजाबाद अयोध्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे सदक और आप सुन रहे हैं आई केयर फॉर यू, जहां हम आंखों की सेहत से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय पर सरल और विश्वसनीय जानकारी लेकर आते हैं। आज का विषय है मोतियाबिंद ऑपरेशन से जुड़ी भ्रांतियां। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि मोतियाबिंद पूरी तरह पकने के बाद ही ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन के बाद महीनों तक बिस्तर पर आराम करना पड़ता है या फिर ऑपरेशन कराने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। क्या ये बातें सच हैं या सिर्फ भ्रांतियां? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं सुनैन आई हॉस्पिटल निकट विमार्ट नियामा फैजाबाद के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मोतियाबिंद को लेकर सबसे बड़ी और सबसे आम भ्रांति क्या है?
1: लोगों के दिमाग में दुविधा ये रहती है कि गर्मियों के मौसम में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी मौसम में कभी भी कराया जा सकता है।
0: जी, अभी बारिश का मौसम आ गया डॉक्टर साहब, तो इसमें
1: कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी मौसम में ऑपरेशन कराएं, अगर वो सही तरीके से ऑपरेट हुए हैं पेशेंट
0: जी,
1: तो उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। दूसरी भ्रांति जो हम देखते हैं वो ये है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन तभी कराना चाहिए जब वो पक जाए। ये भी गलत है। वास्तविकता ये है कि किसी भी मरीज की जो दिनचर्या है वो जब भी प्रभावित हो रही है, उसका काम आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो उसे ऑपरेशन के बारे में विचार करना चाहिए और उसे करवा लेना चाहिए। एक अन्य भ्रांति लोगों में होती है
0: जी,
1: कि अगर किसी मरीज ने किसी लेंस को लगवाया है तो उसकी कोई लाइफ होती है, या वो ये सोचते हैं कि एक समय के बाद वो लेंस खराब हो जाएगा। ये भी गलत तथ्य है
0: जी।
1: लेंस की लाइफ इंसान की लाइफ से ज्यादा होती है, अर्थात उनका लेंस कभी खराब नहीं होगा, चाहे उन्होंने कितने ही कम पैसे का लेंस लगवाया हो।
0: ओके।
1: तो इसलिए लेंस की उम्र को पैसे से ना नापें।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे सुनने वालों को। क्या ऑपरेशन के बाद मरीज कई महीनों तक सामान्य जीवन नहीं जी पाता, देखने में तकलीफ रहती है?
1: नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है
0: जी।
1: विद इन अ मंथ वो अपने पुराने सभी कामों को पुनः आरंभ कर सकता है, चाहे वो एक किसान हो या एक ऑफिस जाने वाला नॉर्मल व्यक्ति हो।
0: क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन केवल बुजुर्गों के लिए होता है या कम उम्र के लोगों को भी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है?
1: किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में यदि मोतियाबिंद

0: है तो उसे ऑपरेशन के बारे में विचार करना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार हम लोग छोटे बच्चों का भी ऑपरेशन करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों में पैदाइशी मोतियाबिंद की शिकायत होती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन के बाद चश्मा कभी नहीं लगता या हर मरीज के लिए अलग अलग चश्मे लगते ही हैं?
0: मरीज को चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा इसके लिए कई सारे कारण होते हैं, जैसे सर्जन की दक्षता, लेंस का चयन
1: जी,
0: और अगर किसी व्यक्ति को सिलेंडर नंबर है तो ऑपरेशन के बावजूद उसको दूर का और पास का दोनों तरह का चश्मा लगेगा अगर उसने साधारण लेंस चुने हैं। यहाँ पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर्जन जिस लेंस की राय देते हैं उस लेंस को लगवाइए अगर आप उसका खर्च वहन करने में सक्षम हैं और चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो।
1: जो लोग डर या गलती के वजह से ऑपरेशन टाल रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे?
0: आज हम जीवन जी रहे हैं
1: जी।
0: अगर हम अपनी नजरों से इस जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और हम इस बात को टाल रहे हैं तो कल का क्या भरोसा है? कल आप हैं या हम हैं या नहीं हैं, और हमारा जो बहुमूल्य जीवन है वो हम कम नजर के साथ गुजारें इसमें कोई समझदारी नहीं है। कभी भी दिक्कत है और डॉक्टर ने सलाह दी है तो उसे अवश्य ऑपरेशन कराना चाहिए।
1: आंखों की किसी भी समस्या को नजरअंदाज मत करिए। यदि आप डॉक्टर गजेंद्र पाल से परामर्श लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। अपॉइंटमेंट और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9838100840 यानी 9838100840 पर। और आंखों की देखभाल से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए माइक का आइकन प्रेस कीजिए और बोलिए चैनल आई केयर फॉर यू। आपको चैनल मिलेगा और ढेर सारी आंखों की विशेषज्ञ जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं था आपका दोस्त आरजे सदक, फिर मिलेंगे आई केयर फॉर यू के अगले एपिसोड में। तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सुनयन आई हॉस्पिटल, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या।
2: अभी आपने सुना कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड आई केयर फॉर यू। हम आकाशवाणी की अयोध्या की इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शेर और गीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
4: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
6: शेर और गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा मुस्कुराएगा। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।

खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलामे वतन, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in.
1: Hello.
2: Hello. Suno. Telephone number.
3: My number is
4: 7376804090. लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें 7376804090.
5: बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर और गीत अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से हमें आजादी मिली है वीर शहीदों के बलिदान से न तन से प्यार है न धन से प्यार है हमें तो बस अपने वतन से प्यार है आज वो दिन आया है जब दिल को मगन कर लो हर शहीद को दिल से नमन कर लो अनेकता में एकता इस देश की शान है इसलिए मेरा भारत सबसे महान है

रात की अंधियारी में जब तक रुतबा रहेगा चांद का, रात की अंधियारी में जब तक रुतबा रहेगा चांद का, कारगिल की चोटियों पर तब तक फहराता रहेगा तिरंगा शान का, धरती क्या आसमान में हर जगह डंका बजेगा हिंदुस्तान का।

अभी आपने सुना कार्यक्रम शीर और गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा

0: आ रही है।
1: हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
3: आज सुबह चार्ज गया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
4: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के

0: शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषि

मनमोहन सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने

0: होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम रुख करते हैं आसपास की खेल गतिविधियों की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षेत्रीय खेल कार्यालय अयोध्या एवं अयोध्या फुटबॉल एसोसिएशन अयोध्या के संयुक्त समन्वय से शनिवार को मंडलीय जूनियर बालक वर्ग का चयन ट्रायल संपन्न हुआ। इस चयन ट्रायल में अयोध्या मंडल से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर जिला व अयोध्या के 35 बालक खिलाड़ियों ने इस चयन में प्रतिभाग किया। अभी अयोध्या मंडल की चयनित टीम खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के संयुक्त समन्वय से जनपद मऊ में 1 से 8 अगस्त तक आयोजित की जा रही अंडर-19 जूनियर बालक बाल की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में अपना मैच 2 अगस्त को खेलेगी। चयन ट्रायल के अवसर पर अयोध्या फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव सज्जाद हुसैन, संयुक्त सचिव राजू यादव, प्रभात सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह आदि सभी मौजूद रहे। ये थी हमारे आसपास की खेल गतिविधियों की खबर। श्रोताओं, आज हम अपने खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर आमंत्रित किए हैं उत्तम सिंह जी को, जो कि शूटिंग रेंज से हैं, राइफल और पिस्टल की शूटिंग का प्रशिक्षण देते हैं। सबसे पहले उत्तम सिंह जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: उत्तम सिंह जी, आप हमें बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम को अयोध्या में करने के लिए आपके मन में विचार कहाँ से आया?
4: ये मैं ट्रेनिंग के लिए जाना, मुझे

0: जाना पड़ता था, जयपुर दिल्ली जाना पड़ता था ट्रेनिंग करने के लिए। फिर पिताजी के सहयोग से हमने यहाँ पे एकेडमी ओपन करी है, और उसके बाद यहाँ पे अपनी पहली एकेडमी थी जो प्राइवेट एकेडमी ओपन हुई है। अब यहाँ पे हम बच्चों को प्रशिक्षण देंगे राइफल और पिस्टल शूटिंग का।
1: अपने बारे में बताएं कि कौन कौन से आपने मेडल जीते हैं, कहाँ तक आप गए हैं शूटिंग रेंज में।
0: मैं 3 बार लगातार स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ, और जोनल में भी मेरा सिल्वर मेडल है, नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है, और मैं भी साई सर्टिफाइड कोच भी हूँ जो कि प्रशिक्षण देने के लिए अब सर्टिफाइड हो चुका हूँ। तो अब मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ बच्चों को।
1: जो ये बच्चों को प्रशिक्षण आप दे रहे हैं अयोध्या शहर में, यहाँ के आसपास के लोग जो आपसे जुड़ते हैं, वो कैसे, किस माध्यम से आपके पास तक पहुँचते हैं?
0: ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो इंटरनेट पे सर्च करके आते हैं, या जो न्यूज़ में आता है खबर, उसके माध्यम से आते हैं। तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनके पेरेंट्स भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। शूटिंग गेम के बारे में लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको पता है वो आते हैं एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कम से कम अपनी एकेडमी पर 20 से 25 बच्चे हैं जो अभ्यास कर रहे हैं।
1: कितनी संभावनाएं हैं शूटिंग के लिए जो हमारे खिलाड़ी अयोध्या फैजाबाद से प्रशिक्षण ले रहे हैं, या कितना आगे तक वो जा सकते हैं?
0: बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो यहाँ पे टैलेंट है जो हम लोग उनको तरास रहे हैं। और अपने पास जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्टेट स्तर पर जो है मेडल जीते हुए हैं। एक बच्चा नेशनल जो इंटर स्कूल होता है उसमें मेडल जीता हुआ, उसके पास 2 गोल्ड मेडल हैं। तो और भी बच्चे हैं, अपने पास करीब 5 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने नेशनल पार्टिसिपेट किया है अभी।
1: अयोध्या शहर रूरल एरियाज से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र भी हमारे आसपास हैं, तो क्या आपके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं या शहर से ही?
0: नहीं, शहर के भी बच्चे आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, काफ़ी दूर से। जैसे पूरा बाजार से आ रहा है एक बच्चा, और लड़की है एक आती है कुमारगंज से, डेली प्रैक्टिस करने के लिए आती है। नवाबगंज से कुछ बच्चे आते हैं जो अभ्यास करने के लिए डेली आते हैं।
1: मतलब शहर, गांव, देहात, सब जगह से आपके पास शूटिंग के लिए आ रहे हैं बच्चे प्रशिक्षण लेने के लिए। मेल फीमेल की संख्या का अंतर क्या है अपने अयोध्या में?
0: उसमें तो काफ़ी अंतर है। देखिए, अभी करीब 70% जो बच्चे हैं वो मेल हैं, बाकी 30% आप कह सकते हैं कि फीमेल जो है आ रही हैं प्रशिक्षण।
1: आप जो प्रशिक्षण देते हैं, जो सिखाते हैं लोगों को, शूटिंग के बारे में बताते हैं, उसमें आप किस तरीके से संसाधन जुटाते हैं, कैसे? आप चूंकि कह रहे हैं कि प्राइवेट एकेडमी आपने बना रखी है, तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और कैसे उसको आप अपने पास रखे हुए हैं?
0: इक्विपमेंट जो भी यूज़ होते हैं वो सारे इंपोर्टेड होते हैं, चाहे टारगेट पेपर की बात करें या वेपन की बात करें। जो राइफल और पिस्टल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारी इंपोर्टेड होती हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, 3 से 4 लाख के वेपन पड़ जाते हैं। उसको हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, एकेडमी प्रोवाइड कराती है उनको। जो भी बच्चा आता है अभ्यास के लिए, उसको एकेडमी की तरफ से वेपन दिया जाता है। जब बच्चे को लगता है कि हाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है और आगे खेलना चाहता है, नेशनल खेलना चाहता है या आगे की ट्रायल्स देना चाहता है, तो फिर बच्चे अपना खुद का हथियार जो है खरीदते हैं। उसमें भी हम लोग काफ़ी सहयोग करते हैं बच्चों का।
1: आप अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कहीं से फंडिंग होती है, या आप फीस के माध्यम से ही कलेक्शन करते हैं?
0: नहीं, हम फीस के माध्यम से ही करते हैं। बाकी पिताजी भी आर्मी में रह चुके हैं, तो उन्होंने वो भी शूटिंग किए हुए हैं, तो उनका भी पूरा सपोर्ट रहता है कि कुछ भी हो जाए जो बच्चे आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करें और आगे जाएं, मेडल जीतें और आगे अच्छा नाम करें अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का।
1: मतलब शूटिंग क्षेत्र में हमारा अयोध्या आगे जाए, इसके लिए आपका जज्बा, आपके पिताजी का जज्बा उसमें शामिल है, और आप यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को जो सीखना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है, ऐसे में आप क्या कुछ खास करना चाहेंगे या कुछ आपकी फरमाइश हो?
0: मैंने हॉल में सबसे पहली मूवी बॉर्डर देखी थी जी। मैं चाहूंगा कि उसका एक गाना आप चला दीजिए।
1: बिल्कुल, आपकी फरमाइश है तो आपका ये प्यारा सा गीत आपको हम सुनाएंगे, और उसके बाद फिर हम बने रहेंगे अपने श्रोताओं के साथ।

0: और ये देखिए खूबसूरत सा नगमा उत्तम सिंह जी आपकी फरमाइश पे हमने आपको सुनाया है, और देखिए देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और हमारे शूटिंग रेंज से जुड़े हुए यहाँ आसपास क्षेत्र के जो प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं प्रतिभागी?
1: मैं सभी श्रोताओं को या जो भी प्रशिक्षण लेने आते हैं बच्चे, उनसे यही कहूँगा कि चाहे आप गेम खेलिए या कोई कुछ भी करिए, आप अपने अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जरूर रखिए, ताकि आप देश के प्रति कुछ सहयोग कर सकें। चाहे वो आप गेम के थ्रू हो, अगर आप अच्छी अचीवमेंट लाते हैं तो भी देश आपको सम्मान देता है और आप भी उसके बदले में देश को सम्मान दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने उत्तम सिंह जी, देश के प्रति अगर हमारी भावनाएं दिल से जुड़ी हुई हैं तो हम अगर खेल से जुड़े हुए हैं या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और देश प्रेम एक ऐसा जज्बा पैदा कर देता है। अगर खेल के क्षेत्र में हम हैं तो हमारे मन में भावनाएं इतनी अग्रसर हो जाती हैं, अगर हम कहीं हार भी रहे होते हैं तो वो जुनून, वो जज्बा हमको जिता देता है कि हम अपने देश भारत के लिए, तिरंगे की शान के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये बताइए, अगर हमारे आसपास अयोध्या क्षेत्र के लोग इस शूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो वो कहाँ तक जा सकते हैं आपके यहाँ से प्रशिक्षण लेकर?
1: देखिए, अपनी जो एकेडमी है उस पर स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कोचिंग भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि आपके पास सुविधा है और कोचिंग

0: नहीं या कोचिंग है तो सुविधाएं नहीं है, दोनों आपके लिए उपलब्ध है। आप जी जान लगा के मेहनत करिए और आगे अग्रसर होते जाइए।
1: हमारे जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले हैं, प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, उनको कैसे ये जानकारी हो कि किसी खेल के कार्यक्रम में हम कैसे भाग लें, उसके बारे में बताएं।
0: जैसे जो विद्यालय के बच्चे हैं, जो स्कूल स्टूडेंट हैं, हर स्कूल में चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपका भी रजिस्ट्रेशन होगा, और आप डिस्ट्रिक्ट खेलिए, मंडलीय खेलिए, उसके बाद आप स्टेट खेलिए और आप नेशनल तक जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह में अगर आप जाते हैं तो आपको हर एक साल के लिए आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का धनराशि भी सहयोग सरकार की तरफ से दिया जाता है।
1: उत्तम सिंह जी, आपने हमारे श्रोताओं को शूटिंग से संबंधित इतनी बढ़िया जानकारी दी, खेल से संबंधित जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये था हमारा आज का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: माँ, ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
5: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
6: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
2: अब आपके सुने आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आंखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आंखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: मगध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: सुनत हूँ सखी सुनत हूँ कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
3: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
3: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
4: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमारे नंबर 7376-8040-90 पर कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे, सुन सकते हैं अपनी फरमाइश के नगमे। तो देखिए हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो
5: हेलो सर नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
5: अंजू यादव।
0: अंजू जी गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगी आज आप?
5: बरसात फिल्म।
0: बरसात का कौन सा गाना आपको सुना दिया जाए? बरसात का कौन सा गाना सुनेंगी?
5: बरसात के दिन
0: आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन तो आ ही गए हैं, लेकिन ये बताइए देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस, तो ऐसे में आप हमारे सैनिकों के लिए क्या कहना चाहेंगी, देश के लिए क्या बोलना चाहेंगी?
5: सॉरी सर,
0: इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगी?
5: नहीं।
0: अच्छा जी, देश से बाहर रहती हैं?

0: हाँ सर।
1: क्या बात है, कहाँ से फोन किया है आपने?
0: हम रहते हैं जैसे यहाँ से रहते हैं, बाहर रहते हैं जैसे।
1: अच्छा जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: और ये बहुत ही खूबसूरत से नगमे की फरमाइश थी। हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उन शहीदों को, उन जवानों को हम सैल्यूट करते हैं जो हमारे देश की रखवाली करते हैं और हमारे देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए 7376 80 40 इस 9040 90 नंबर जो हमारा है 7376 80 40 90 इस पर आप कॉल करें और हमसे जुड़ें। और हमारे एक श्रोता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए अपना।
1: सर, ये हमारी दीदी से बात कर लीजिए।
0: दीदी से बात कर लें, दीदी जी को फोन दीजिए।
2: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता आकाशवाणी अयोध्या वो अपनी किस्मत पे नाच करता है।
0: क्या बात कही है आपने आकाशवाणी अयोध्या के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह की सोच आप रखती हैं। और क्या करती हैं जी आप?
2: जी मैं सिलाई करती हूँ सर।
0: सिलाई का काम करती हैं। ये बताइए, आज कारगिल विजय दिवस है और हमारे जो जवान वहां पर कारगिल में युद्ध लड़े थे 1999 में, तो विजय हुई थी हमारी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: विजय हुई थी ना, चलो इसीलिए विजय पथ का गाना भी सुनना है और उनको विजय हमारे ओर से इनको कारगिल दिवस के जो हमारे सैनिक जो सेना पे सट के खड़े, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, उनको हमारी ओर से बहुत बहुत सलाम सर।
0: अच्छा जी, गाने का बोल बता दीजिए, कौन सा गीत आप सुनना पसंद कर रही हैं?
2: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से, फिल्म का नाम सर विजय पथ और गाने की बोल है, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे
0: वही बात हो गई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।
2: ये सुना दीजिए सर।
0: जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
2: शुक्रिया सर।

0: गई और हमारी भी आपसे बात हो गई। देखिए हमारे कॉलर लाइन पर आ गए हैं। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: भगवान सिंह परमार जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत अच्छे हाल चाल है सर जी। और आज हमारा पूरा भारत देश करगिल विजय मतलब करगिल विजय दिवस मना रहा है, तो हम सभी देशवासियों को शुभकामना दे रहे हैं। और जो अपने देश के जो वीर जवान शहीद हुए करगिल युद्ध में सर जी, उनको मैं एक गीत समर्पित करता हूँ। फिल्म का नाम है कर्मा और गाने के बोले, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।
0: क्या बात है, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये ऐसा गाना है जो सभी श्रोताओं और जो हमारे देश के जितने भी साथी हैं, हमारे फौजी हैं, इसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देश के प्रति जज्बा हमारा बढ़ जाता है।
1: जी जी सर जी, और उनके कारण ही हम सुरक्षित हैं सर जी। अपने घरों में सांस ले रहे हैं तो हम उनको सादर मतलब सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं जो शहीद हुए हैं उनको सर।
0: बिल्कुल, जो शहीद हुए हैं हमारे देश के जवान। और कारगिल युद्ध उस समय ऐसी सिचुएशन थी, ठंडक और वहां पर खूब सारी जो बर्फबारी हो रही थी, और ऐसे में ऊपर सेना थी पाकिस्तान की, हमारे सैनिक नीचे थे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां कठिन थी कि जीतना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन हमारे देश के जवानों का जज्बा जुनून इतना ताकतवर था कि हमने विजय हासिल की और उस कारगिल की ऊंची चोटी पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा
1: जी। और मुझे कारगिल युद्ध की बहुत अच्छी तरह से याद है सर जी। उस समय अपने अटल जी प्रधानमंत्री थे सर जी, और उनने तत्काल जब पाकिस्तानी सेना ने अपनी चौकियों पर कब्जा किया था, तो उनने तत्काल ऑर्डर देके सेना को वहां पहुंचा के और बू फोर्स तौर पे द्वारा वहां पर

0: इतना कराया सर जी, उस अपने पास ऊपर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो नीचे से सेना ने लड़ाई करी थी सर जी उसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही देश पे मर मिटने की जो भावना है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। और हम अगर देश के लिए हम नहीं कुछ कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है
0: जी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: क्या आप अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं? तो आइए भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अयोध्या, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमफॉर्म, बीफॉर्म, डीफॉर्म, एमएससी और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमलिट, बीलिट, बीएससी होम साइंस, एमकॉम, बीकॉम में प्रवेश हेतु भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, निकट लोहिया पुल, सीवार, सुहावल, अयोध्या में अभी कॉल करें 7081680000।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में 7376804090 इस नंबर को डायल करके। और देखिए हमारे एक श्रोता ये नंबर डायल कर चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो
3: जी,
2: नाम बताइए अपना।
3: प्रेमचंद यादव।
2: प्रेमचंद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? भरत कुंड से बोल रहे हैं। पिपरी भरत कुंड से बोल रहे हैं। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया है। देश के जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
3: जवानों के लिए अच्छे है और एक बार को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य कर रहे हैं। दर्द हमको भी होता है कि कोई मतलब मजाक कर, लेकिन अब भाई लड़ाई तो हुई है
2: जी।
3: जब हमको
2: आप गीत कौन सा सुनना पसंद करेंगे? गाना कौन सा सुनेंगे आज आप? लैला मजनू का कौन सा गाना सुना दें? हाँ, बड़े ही सुंदर गाने की फरमाइश किया है आपने। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार जी।

0: को और देखिए आपकी फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है और हम बातें कर रहे हैं आपसे 7376-8040-90 इस नंबर के माध्यम से और हमारे एक श्रोता लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी सर, मेरा नाम विजय वर्मा, ग्राम पोस्ट गोपालपुर से।
0: विजय वर्मा जी, और बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: सर मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं।
0: हम बहुत बढ़िया हैं। देश मना रहा है विश्व कारगिल विजय, कारगिल विजय दिवस पर कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल जी। उनको करते हैं हम सलाम, विजय जिन्होंने दिलाई थी अपनी जान की बाजी लगाकर, कारगिल फतह कराई थी। याद करो उन वीरों को, सरहद पर जान गवाई है, मातृभूमि की रक्षा करके तिरंगे की शान बढ़ाई है। जो मिट गए हैं वतन के लिए, याद उन्हें हर पल करते हैं। कारगिल के उन वीरों को हम दिल से सलाम करते हैं। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को सत सत नमन।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें आपने ये स्वयं लिखी हैं। क्यों
1: जी,
0: ये आपकी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं ना?
1: जी सर, आजकल बस इतना तो नाले, जैसे आप एक एक श्रोता भी बहन जी जुड़ी हैं, वो कहें सॉरी उनको कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं।
0: इसमें तो

0: की गलती नहीं थी, वो मुख्य गलती होती है शिक्षा की। अगर जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है किसी वजह से, या मान लीजिए सामाजिक नहीं है, अभी भी कई जगहें ऐसी हैं या कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पीछे हैं चीजों से, अभी उनको बहुत चीजों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए रेडियो और इस तरह के माध्यम बनाए गए हैं कि उन तक बातें पहुंचे, ज्ञान पहुंचे, उनको भी जानकारी हो देश क्या है, तरक्की क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, इसीलिए हम प्रयासरत रहते हैं।
1: जी बिल्कुल सही, आपकी बात सही है और जानकारी रखना चाहिए। सर आपका शाम 5 बजे का जो प्रोग्राम आ रहा था लोक संगीत, उसमें जो आपने देशभक्ति गाया था
0: जी,
1: वो हमको बहुत अच्छा लगा, और वो रत्नेश द्विवेदी सर का, ये दोनों आपकी आवाज में और रत्नेश द्विवेदी जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आवाज का गीत आपको पसंद आता है, लोक गीत जो आता है हमारा।
1: जी बिल्कुल सर, हम देखते रहते हैं आपको बराबर फेसबुक और यूट्यूब पर।
0: चलिए, गाना कौन सा आज आप सुनना चाहेंगे?
1: सर तिरंगा फिल्म का आज सुना दीजिए, कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को सतत नमन करते हैं, और इसी पर हमको तिरंगा का गाना सुना दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी थैंक यू सर।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह के साथ। कार्यक्रम में बने रहिए 7376804090 ये नंबर डायल करके, और हम बात करेंगे एक श्रोता से। हेलो।
4: हेलो सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
4: सर दुले सिंह यादव बोल रहा हूँ सर, आगर मालवा के पास में गांव है बादशाह छोटा सा सर।
3: मध्य प्रदेश से?
4: मध्य प्रदेश से सर।
3: और बताइए
4: सर, आज जो है विजय दिवस है कारगिल के ऊपर
3: जी,
4: उपलक्ष्य में सर इस पे गाना सुनना चाहता हूँ सर, वतन की रखवाले फिल्म का
3: टाइटल सॉन्ग।
4: और सर जो शहीद हुए उन नौजवानों को सर सत्तर नमन करता हूँ सर मैं।
3: चलिए, बहुत खुशी की बात है जब हमारा पूरा देश ऐसा जश्न मना रहा है और आप उनको शहीदों को नमन कर रहे हैं।
4: हाँ सर, बिल्कुल सर, परिवार वालों के नाम लेना चाहता हूँ सर आप कहो तो।
3: बिल्कुल, सभी का नाम ले लीजिए
4: सर। यहाँ पे हम मेरा बेटा का बेटा बैठा हुआ है सर, हार्दिक यादव और भविष्य यादव सर
3: जी। और
4: हेलो,
3: और कोई
4: सर? और दिलीप यादव और रामेश्वर यादव सर।
3: पूरे यादव परिवार के साथ आप एंजॉय कीजिए अपनी पसंद का ये नगमा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहली बार कॉल लगा मेरा यहाँ आकाशवाणी में।
3: चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी कॉल लग गई, अयोध्या तक आपकी बात पहुँच गई।

0: दिनों से प्रयास कर रहा था सर, मैं पिछले 3-4 महीनों से सुनता हूँ, मैं सर डेली सुनता हूँ मैं इसको प्रोग्राम को।
1: कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता यारों, जरा एक पत्थर तबीयत से तो उछालो, है ना। तो आपका पत्थर आज उछल गया और सुराख भी हो गया, पहुंच गई आपकी कॉल हमारे पास तक। ठीक है जी, कॉल करने के बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू आपको।

0: और ये देखिए खूबसूरत सा नगमा फरमाइश किया था हमारे श्रोता ने, और हमारे एक और कॉलर लाइन पर आ चुके हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मेरा नाम तौहीद अली मौजा सरैया तिवारी, जिला बस्ती से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, और बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: सर बहुत अच्छी हाल चाल है, बहुत अच्छी हाल चाल है सर।
0: बहुत अच्छे हाल चाल है
1: जी सर, बहुत अच्छे। सर हमने सोचा कि कल 4 किलो आय चल रहा है सर, हमने सोचा कुछ हम भी याद कर ले अपने हिंदुस्तान के लिए।
0: कारगिल की लड़ाई नहीं चल रही है, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी।

0: और जिसमें भारत की विजय हुई
1: जी,
0: थी,
1: है ना?
0: हाँ जी, उस दिन के लिए विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है
1: जी सर, हम लोग भी मनाते हैं सर।
0: अच्छा जी, गाना कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
0: अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है भी, ये गाना ही नहीं ये सच्चाई भी है।
1: ऐसा, जी जी,
0: ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता है?
1: लगता है सर, ये सच्चाई है, गाना नहीं सच्चाई है कि सारे जहाँ से, जहाँ कोई देश में, जहाँ हर चीज हमारे देश में, कोई देश कोई नहीं रहता है तो हमारे देश में हर नदी है, हर चीज हमारे देश में है।
0: ये सब तो सब देश में है, लेकिन मेन बात ये है कि हम जिस मातृभूमि में पैदा होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, खाते सोते उठते बैठते हैं, वो देश हमारे लिए फक्र का विषय होता है, और उसके लिए हम यही बोल सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा नगमा।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी।

0: और देखिए हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बातें करेंगे। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं आप?
1: हम सोनिया बोल रहे हैं, अम्बेडकर नगर से।
0: अम्बेडकर नगर में कहाँ से बात कर रही हैं सोनिया जी? हेलो सोनिया जी,
1: जी सर।
0: आप तक आवाज पहुंच रही है?
1: जी आ रही है, तो कट रही थी आवाज।
0: अच्छा जी, अम्बेडकर नगर के किस स्थान से बोल रही हैं आप?
1: हमारा टांडा

0: क्षेत्र में आता है वस्थाली, सरजू जी के किनारे है एकदम गांव।
1: अच्छा, अयोध्या सरयू के किनारे है और आपका गांव भी सरयू जी के किनारे है?
0: नहीं, हमारे जिले का नाम बेसर नगर है।
1: वो मैं समझ गया।
0: नौरानी, हमारे गांव का नाम है नौरानी रामपुर।
1: अच्छा, नौरानी रामपुर से बोल रही हैं। और बताइए, देश कारगिल दिवस मना रहा है, कारगिल विजय दिवस, ऐसे में कुछ कहना चाहेंगी?
0: सर, बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो जो कारगिल पे जवान गए हैं, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर, हम तो सब सब नमन करते हैं सर।
1: अच्छा जी, जय हिंद करती हैं। गाना कौन सा आज सुनना पसंद करेंगी आप?
0: दिल जलेगा सुना दीजिए, मेरा मुल्क मेरा देश मेरे है वतन।
1: क्या बात है, देशभक्ति गीत की फरमाइश आपकी आई है, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। और बताइए, हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको सोनिया जी?
0: कार्यक्रम तो सब अच्छे होते हैं सर, लेकिन दिन में सुन नहीं पाते हैं, शाम को यही सुनते हैं।
1: शाम को हेलो फरमाइश सुनती हैं आप?
0: जी सर।
1: हेलो अयोध्या कार्यक्रम में आपको फोन कॉल लगते रहते हैं या पहली बार कॉल लगी है?
0: नहीं लगे हैं सर, ऐसी बात नहीं, आपसे बात हुई है।
1: अच्छा, हमसे बात हुई है, चलिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी अयोध्या से, सुनते रहिए अपनी पसंद के नगमे। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

ये था हमारा आज का हेलो अयोध्या कार्यक्रम। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त गणेश सिंह को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
5: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
5: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
5: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
5: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना ना हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
5: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
5: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
6: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आ जाते

0: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी की अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं। 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली के इंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट